मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार दिनांक 28 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए।

0: सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना के प्रारंभ में सुनते हैं ये देशगान समूह स्वरों में।

कार्यक्रम आराधना में इस देशगान के बाद अब आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना। स्वर लखबीर सिंह लखा और साथियों के हैं।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। आइए कार्यक्रम आराधना में अब सुनते हैं ये अगली भक्ति रचना। स्वर दिया है दिलीप सेन, बबला मेहता और साथियों ने। संगीत दिलीप सेन, समीर सेन का है और इसे लिखा है देव कोहली ने।

इस भजन के बाद कार्यक्रम आराधना में अब ये सुनते हैं माँ शेरावाली माता का भक्तिमय एक और भक्ति गीत, स्वर बाबला मेहता और साथियों के हैं।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय है आत्मस्वीकृति। संकलन और वाचन स्वर धरती का है।
1: आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है। कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, कोई सुंदर दिखने की चाह में खुद को बदल रहा है, तो कोई दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। इस भागदौड़ में इंसान सबसे अधिक जिस चीज को खो देता है वह है स्वयं को स्वीकार करना, आत्मस्वीकृति, अर्थात अपने व्यक्तित्व, अपनी कमियों, अपनी खूबियों और अपनी वास्तविकता को पूरे मन से स्वीकार करना। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं, किसी की सुंदरता देखकर अपने चेहरे से असंतुष्ट हो जाते हैं और किसी की खुशियों को देखकर अपनी ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर इंसान अपने संघर्षों, अनुभवों और परिस्थितियों से बना होता है, इसलिए खुद को दूसरे के तराजू पर तौलना केवल दुख और हीन भावना को जन्म देता है। आत्मस्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास ही छोड़ दें। इसका वास्तविक अर्थ है स्वयं से नफरत किए बिना खुद को बेहतर बनाना। जब इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तभी वह उनसे सीख पाता है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता वह हमेशा दूसरों की स्वीकृति खोजता रहता है। उसकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मस्वीकृति सीख लेता है उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास बन जाता है। जीवन में असफलताएं हर किसी के हिस्से में आती हैं। कई बार लोग हमें अस्वीकार करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते। ऐसे समय में यदि इंसान खुद का साथ छोड़ दे तो वह भीतर से टूट जाता है। लेकिन आत्मस्वीकृति हमें यह सिखाती है कि मैं जैसा हूँ वैसा भी मूल्यवान हूँ। यही सोच मनुष्य को मानसिक शांति और संतुलन देती है। महान कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं को पहचानने का होता है। जब इंसान अपने भीतर के डर, दुख और कमियों को स्वीकार कर लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनता है। आत्मस्वीकृति हमें नकली दिखावे से दूर ले जाकर वास्तविक जीवन जीना सिखाती है। आज सोशल मीडिया के समय में लोग अपनी जिंदगी का केवल चमकदार हिस्सा देखते हैं। इसे देखकर कई युवा स्वयं को दूसरों से कम समझने लगते हैं। वे अपने रंग, रूप, जीवन शैली या सफलता को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे समय में आत्मस्वीकृति एक दीपक की तरह काम करती है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी पहचान केवल बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और इंसानियत से बनती है। आत्मस्वीकृति का सबसे सुंदर प्रभाव यह होता है कि इंसान धीरे धीरे स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है। जब हम खुद को अपनाते हैं तब हम दूसरों को भी अधिक सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। मन में ईर्ष्या कम होती है और संतोष बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से हारता नहीं बल्कि हर कठिनाई से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हमें यह समझना होगा कि पूर्णता केवल एक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां और कुछ विशेषताएं होती हैं। इसलिए स्वयं को बदलने से पहले स्वयं को अपनाना आवश्यक है। आत्मस्वीकृति ही आत्मविश्वास की नींव है और आत्मविश्वास ही सफलता का पहला कदम है।

अंततः आत्मस्वीकृति केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब इंसान स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब वह दुनिया की आलोचनाओं से डरना छोड़ देता है। वह अपने सपनों की ओर साहस के साथ बढ़ता है और भीतर से सच्ची खुशी महसूस करता है। इसलिए हमें दूसरों जैसा बनने की बजाय स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनने का प्रयास करना चाहिए। यही आत्मस्वीकृति का वास्तविक संदेश है।

प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गायन का 77वां भाग। गायन स्वर राजेंद्र काचरू और चतुर सेन के हैं। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

मारीच तथा सुबाहु सहित अन्य राक्षसों के उपद्रव से मुक्ति पाने के उद्देश्य से विश्वामित्र ने राजा दशरथ के सम्मुख उपस्थित हो राक्षसों के संहार के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी की याचना की। बोले, इनके द्वारा राक्षसों के वध होने पर वह निरापद हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर महाराज दशरथ के मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। वह मुनि के चरणों में धरती, गोधन, राजकोष अपना सब कुछ अर्पित करने को प्रस्तुत थे, किंतु प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को मुनि को देते किसी प्रकार नहीं बनता। ये सुकुमार किशोर भला किस प्रकार राक्षसों का सामना कर सकेंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने अपने वचनों द्वारा राजा दशरथ का संदेह और अज्ञान दूर किया। राजा ने अपने दो पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दिए। पुरुष रूप में दो सिंह श्रीराम और लक्ष्मण मुनिजन के कष्ट हरने चले। श्याम और गौर वर्ण के दो परम सुंदर किशोरों के रूप में मुनिवर को जैसे दुर्लभ निधि प्राप्त हो गई हो। राह में ताड़का वध करते हुए दोनों भाई मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की जिससे भूख प्यास न लगे तथा शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।

0: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है मई जून में कृषि प्रबंधन।
1: किसान मित्रों, मई जून में मुख्य रूप से बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तरोई, करेला, कद्दू, भिंडी, धनिया और मिर्च बैगन की नर्सरी लगाना सबसे लाभदायक होता है। इस मौसम में तेज गर्मी के कारण खेत की गहरी जुताई जरूरी है ताकि कीटाणु नष्ट हो जाए। ये फसलें बरसाती सीजन के लिए तैयार होती हैं और बाजार में ऊंचे दाम पर मिलती हैं। बेल वाली सब्जियां लौकी, तुरई, करेला, कद्दू और खीरा ककड़ी, इसके लिए मचान विधि सर्वोत्तम होता है। भिंडी गर्मी की सबसे प्रमुख फसल है जो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, अतः किसान भाई बहन भिंडी की फसल भी ले सकते हैं। मई में धनिया की बुआई जून जुलाई में अच्छी मांग दिलाती है, इसलिए धनिया की फसल भी किसान भाई बहन ले सकते हैं। जून के लिए नर्सरी में टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूलगोभी की नर्सरी तैयार करें ताकि बारिश शुरू होते ही रोपाई की जा सके। इसी प्रकार अदरक और हल्दी छायादार स्थानों और अन्य फसलों के बीज ले सकते हैं। खेती की तैयारी के लिए रोटावेटर से गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और कीड़े धूप में नष्ट हो जाएं। फसलें केवल बारिश पर निर्भर न रहें, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था का भी ध्यान रखें। जल निकासी का उचित प्रबंध करें ताकि बारिश अधिक होने पर फसल सड़ने न पाए। इसी प्रकार हाइब्रिड किस्मों का चयन करें। इन महीनों में की गई खेती मानसून की शुरुआत के साथ बंपर पैदावार और मुनाफा देती है। मई और जून के महीने कृषि प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय खरीफ फसलों की तैयारी और ग्रीष्मकालीन फसलों के रखरखाव का होता है। मई जून की तेज धूप में खेतों की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई अवश्य करें। इससे मिट्टी के अंदर छिपे हानिकारक कीड़ों के अंडे और बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जून के पहले पखवाड़े में बासमती और अन्य अवधि वाले धान की नर्सरी भी किसान भाई बहन तैयार कर सकते हैं। सब्जियों में मुख्य रूप से टमाटर, मिर्च और बैंगन का पौध तैयार करने का यह सही और उचित समय है ताकि मानसून आते ही रोपाई की जा सके। अत्यधिक गर्मी के कारण फसलों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ने और सब्जियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई अवश्य करें। मानसून की शुरुआत से पहले खेत की मेड़बंदी करें ताकि खेत का पानी खेत में ही संचित रहे और सूखे समय में काम आवे। इसी प्रकार गर्मियों में पशुओं को लू और भीषण गर्मी से बचाने के लिए उन्हें छायादार, हवादार स्थान पर रखें और ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं। पशुपालक और किसान भाइयों बहनों के लिए कुछ अनुशंसित फसलें जैसे मक्का व अरहर मई के अंत से जून के मध्य तक बुआई पूरी कर लेनी चाहिए। सब्जियों में भिंडी, लौकी, तुरई और करेला जैसी सब्जियों की बुआई लाभदायक रहती है। इसी प्रकार मूंग, उड़द और अरहर की खरीफ बुआई जून महीने में की जा सकती है। मई और जून का महीना धान की नर्सरी तैयार करने और बरसाती सब्जियों की बुआई के लिए भी सबसे उत्तम समय है। धान की अच्छी पैदावार के लिए नर्सरी का सही समय और बीजोपचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। धान की नर्सरी डालने के लिए 15 मई से 20 जून तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। मई के दूसरे सप्ताह से जून के अंत तक बासमती किस्मों में जून का पहला सप्ताह सबसे उपयुक्त माना जाता है।
0: कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण अभी किया गया। सामयिक सुझाव का विषय था मई जून में कृषि प्रबंधन।

260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों की जानकारी। एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुनिएगा आज दोपहर 12 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुनेंगे आज शाम 5 बजे। सरगुजिया लोकगीतों का आनंद लेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम गुंजे जंगल में प्रातः 7 बजे और कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा प्रातः 7:15 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का प्रसारण समय है प्रातः 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन होगा सुबह 9 बजे। फरमाइशी लोकगीत सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम गाँव कर गीत में सुबह 10 बजे। प्रस्तुति सहायक होंगे एस धर्मेंद्र और प्रस्तुतकर्ता हैं परमेंद्र कुमार। श्रोताओं के भेजे खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुबह 11:05 पर और कार्यक्रम मनभावन रात 10:30 पर आप सुन सकेंगे। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चैन सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। शहरी माताएं और बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:10 पर। बातचीत का विषय होगा पानी की स्वच्छता है जरूरी और लू से बचें। साथ ही क्रम होगा गुलदस्ता और घरेलू नुस्खे और कुछ गीत संगीत भी हम सुनेंगे। आपके भेजे ईमेल से सजा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:40 पर और रात 9:30 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का लुत्फ उठाइएगा कार्यक्रम गीत गंधा में दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी होगा शाम 5:30 पर जिसमें युवा साथी सुन सकेंगे युवा सोच और महफिल। किसान भाइयों और ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर और किसान वाणी का समय है शाम 7:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आज रात 10 बजे सुनेंगे श्री हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग दुर्गा। कार्यक्रम भजन संध्या में गैर फिल्मी गीत गैर फिल्मी भजन और फिल्मी भजन सुनेंगे शाम 5:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी शाम 6:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा में सुनेंगे शाम 7:05 पर। फिल्मी गाने सुनेंगे चित्रपट संगीत में रात 9:15 पर।

श्रोताओं, ये था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत समाचार का अनुप्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। आइए अब सुने लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ सरगुजिया लोकगीत। पहले सुनते हैं शेषराम और साथियों का गाया ये देवी भजन।

निर्मल दास और साथियों के गाए इस भुईहारी गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गुंजे जंगल समाप्त हुआ। श्रोताओं, कुछ और सरगुजिया लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20।

पर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी अंबिकापुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम सुगम संगीत में अब आइए सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाइये गज़ल।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। पहले ये सूचना सुनिए। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गाँव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। साथियों, एक और सूचना सुनिए। नगरपालिक निगम अंबिकापुर आयुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभाष नगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक मोर मकान मोर आस अंतर्गत माता राजमोहिनी देवी भवन में 1 जून को सुबह 11 बजे से शेष बचे 177 आवासों का हितग्राहियों को लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत शासन से कुल 493 आवासों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें पूर्व में 316 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 के पूर्व निवासरत एवं केंद्र एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार गरीब, मजदूर, दिहाड़ी, आवासीन और भूमिहीन लोगों को शामिल किया गया है। आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने हेतु हितग्राही निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सकते हैं। अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म 20 साल बाद से। आवाज़ हेमंत कुमार की थी।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगली सूचना सुनिए। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संवर्गों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ये सूची 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में तैयार की गई है। जारी आदेश के अनुसार रेडियोग्राफर, प्रशिक्षण प्राप्त अंधकक्ष सहायक, डार्क रूम असिस्टेंट, नेत्र सहायक अधिकारी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफिसर तथा लैब टेक्नोलॉजिस्ट संवर्ग के MPHW पुरुष महिला ग्रेड 1 कर्मचारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा रही है। विभाग ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण, सेवा अनुभव एवं पंजीयन संबंधित अर्हताएँ अनिवार्य होंगी। विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया के तहत जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की गई है। सूची का अवलोकन जिला सरगुजा की NIC वेबसाइट पर किया जा सकता है। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के संबंधित कर्मचारियों को सूची उपलब्ध कराएँ। यदि किसी कर्मचारी के नाम, प्रविष्टि अथवा विवरण में त्रुटि हो या किसी पात्र कर्मचारी का नाम छूट गया हो तो प्रमाणित दस्तावेजों सहित निर्धारित अवधि में दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस हेतु 4 जून तक दावा आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा अंतिम सूची के आधार पर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

पतिता, इस फिल्म का गीत अभी हमने सुना। आवाज़ें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की थीं। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत सचिन देवबर्मन का था।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में ये जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब ये विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अब ये तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुन हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

श्रोताओं, अगली सूचना बलरामपुर जिले से है। सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत आयोजित किए जा रहे जनसमस्या निवारण शिविरों की तिथि में अपरिहार्य कारणों से संशोधन किया गया है। 2 जून 2026 को विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत महावीरगंज पावर हाउस के पास में शिविर आयोजित किया जाना था। संशोधित शिविर तिथि के अनुसार अब ग्राम पंचायत महावीरगंज पावर हाउस के पास में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन 30 मई 2026 को किया जाएगा। उक्त शिविर में ग्राम पंचायत महावीरगंज में विजयनगर, भाला, चाकी, चुमरा, मेघुली, गम्हरिया, महावीरगंज, चिनी, केवली, कनकपुर, लुर्गी, पिपरौल, परहियाडी के ग्राम लाभान्वित होंगे। अब सूचना अंबिकापुर से। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के अधीक्षक ने बताया कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण अंतर्गत संचालित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर विशेष आदिवासी आईटीआई में शैक्षणिक सत्र सन 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 मई 2026 से 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट cgiti.admission.nic.in के माध्यम से कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर के सूचना पटल पर वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश विवरणिका का अवलोकन कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी या मदद के लिए अभ्यर्थी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर के संपर्क नंबर 9165830587 में संपर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं।

अनाड़ी, इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे। आवाज़ मुकेश की थी, शब्द रचना शैलेंद्र की थी और संगीत शंकर जयकिशन का था। श्रोताओं, अब अगली सूचना सुनिए। जिला बलरामपुर से, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान की पहल की गई है। अभियान का उद्देश्य देश एवं राज्य में उपलब्ध प्राचीन एवं ऐतिहासिक पांडुलिपियों का सर्वे, सूचीकरण और संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थानों एवं निजी संग्रहों में संरक्षित पांडुलिपियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिसमें पांडुलिपियों का स्वामित्व उनको धारण करने वाले व्यक्ति, परिवार और संस्था का ही होगा। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके लिए जिला एवं स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षक का गठन किया गया है। जिलेवासियों से अपील की गई है कि यदि उनके पास ऐसी पांडुलिपियां हैं जो अब तक सर्वेक्षित नहीं हैं, या उन्हें किसी स्थान, परिवार या संस्था में पांडुलिपियों की जानकारी है, तो वे इस सर्वेक्षण से अवश्य जुड़ें एवं प्रशासन को अवश्य उपलब्ध कराएं। यह राष्ट्रीय अभियान हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे नागरिक जिन्हें अपने आसपास पांडुलिपियों की जानकारी है, वे भी इस सर्वेक्षण से जुड़कर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने के लिए डिजिटल माध्यम ज्ञान भारतम पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने पास उपलब्ध पांडुलिपियों को ज्ञानभारतम.com पोर्टल और ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप के माध्यम से आवश्यक जानकारी दर्ज कर इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। सर्वेक्षण के पश्चात सरकार इनका डिजिटाइजेशन और संरक्षण करेगी। पांडुलिपियों का स्वामित्व उनके धारण करने वाले व्यक्ति, परिवार और संस्था का ही होगा। आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं।

0: पत्थर के सनम, इस फिल्म का गीत अभी हमने सुना। इसे गाया था मुकेश ने। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। पहले समाचार प्रभात और फिर मॉर्निंग न्यूज़। अब आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
6: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता

0: योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुँचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक

0: दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees.

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 8:30 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका जीवन सुधा।

0: स्वास्थ्य पत्रिका जीवन सुधा सुन रहे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, जीवन सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे मूत्र तंत्र और पुरुषों की समस्याओं पर। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आकाशवाणी अंबिकापुर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया।
0: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि यूरोलॉजी क्या है और जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आप करते हैं?
1: यूरोलॉजी सर्जरी की एक विशेषज्ञता वाली ब्रांच है। जनरल सर्जरी के बाद, आगे की पढ़ाई के बाद लोग यूरोलॉजिस्ट बनते हैं
0: जी।
1: और इसमें मुख्य तौर पर हम लोग सर्जन हैं जो कि किडनी की सर्जरी करते हैं, प्रोस्टेट की, मूत्र रोग की, जो सर्जिकल बीमारियां हैं
0: जी,
1: उसका इलाज करते हैं
0: जी। आपने बात की किडनी संबंधी समस्याओं की और उसमें मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में एक समस्या है जिसकी आपने भी चर्चा की, स्टोन की समस्या। तो सर, स्टोन की समस्या की अगर हम बात करें तो इसके क्या कारण है, क्यों स्टोन की समस्या हमारे क्षेत्र में दिखाई देती है? और स्टोन की समस्या पहले ये माना जाता था कि एक उम्रदराज लोगों में होती है, लेकिन आज के समय में सभी उम्र के लोगों में देखी जा रही है
1: जी। जो पथरी या स्टोन की समस्या है, आमतौर पर दो तरह के स्टोन होते हैं
0: जी।
1: एक गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और एक मूत्र तंत्र में, किडनी में, पेशाब की नली में या फिर ब्लैडर में स्टोन होता है
0: जी।
1: तो अपन किडनी, पेशाब नली और ब्लैडर के स्टोन की बात ज़्यादा करेंगे
0: जी।
1: ये आमतौर पे जो स्टोन है भारत में, किडनी स्टोन यानी कि जो मूत्र तंत्र के स्टोन है, काफ़ी कॉमन है और एक तरह से हर दसवां आदमी कहीं ना कहीं इससे पीड़ित होता है। मतलब भारत की जितनी भी आबादी है, ऐसा मान लीजिए कि दस में से एक आदमी को ये बीमारी होगी जीवन काल में कभी, इतनी कॉमन है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की जो जलवायु है, ये गर्मी में काफ़ी गर्म हो जाती है, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो कहीं ना कहीं पानी की कमी सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं
0: जी।
1: और आपने जैसे कहा कि ये बुज़ुर्गों में बीमारी होती है, आमतौर पर ये बुज़ुर्गों में बीमारी नहीं होती है, युवा अवस्था में ही ज़्यादा होती है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर जाके काम करना है, मेहनत का जो काम करना है, वो युवा लोग ज़्यादा करते हैं। तो स्टोन की बीमारी मारक तो नहीं होती, लेकिन जो रोज़गार है, जो लोगों के काम करने का तरीका है, उसमें बाधक कई बार बनती है
0: जी। आपने बताया कि अक्सर पानी की कमी से ये बीमारी होती है, पानी कम लेने की वजह से ये स्टोन की समस्या लोगों में होती है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं स्टोन के बनने के?
1: मुख्य तो पानी की कमी है
0: जी।
1: फिर आहार है, आजकल जैसे फास्ट फूड का जो एक पूरा कल्चर चल रहा है, ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा नमक खाने से भी स्टोन बनता है, ज़्यादा शुगर लेने से बनता है, स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपनाने से, अगर जो सिटिंग जॉब्स हैं, जैसे बहुत लंबे समय तक बैठकर काम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम नहीं हो पा रहा है, तो भी स्टोन बनता है। तो अगर अच्छा आहार लें, संतुलित आहार लें, पानी ज़्यादा लें, एक्सरसाइज करें, नमक कम खाएं, शक्कर कम खाएं, तो न केवल स्टोन बल्कि बाकी बीमारियों से भी बचा जा सकता है
0: जी। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को स्टोन की समस्याएं होती हैं वो उनको पता ही तब चलता है जब बहुत तेज़ दर्द उनमें उठती है, उनके पेट में, या जब वो बहुत तेज़ दर्द महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जो स्टोन से ग्रसित है और उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रही है, तो तत्काल प्रभाव से उसको क्या करना चाहिए, कैसे उस दर्द से मुक्ति पाए, या उस समय क्या कुछ किया जा सकता है?
1: उसके लिए घर पे तो ज़्यादा करना संभव नहीं है, क्योंकि स्टोन का जो दर्द होता है काफ़ी तेज़ होता है
0: जी।
1: और उसको सरल घरेलू उपचारों से तो

0: आराम कई बार नहीं मिलेगा,
1: जी
0: तो पास का जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके चिकित्सक को दिखाने से, पेन किलर इंजेक्शन वगैरह लगाने से तात्कालिक राहत मिलती है।
1: जी फिर तात्कालिक राहत के पश्चात जब इलाज की बात आती है, कई तरह की बातें आती हैं, सर्जरी की बात आती है और दवाइयों से के माध्यम से इलाज, और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि वो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जड़ी बूटियों से ठीक हो जाता है या कुछ झाड़ फूक से ठीक हो जाता है, तो इसकी क्या सत्यता है, इसके इलाज की क्या प्रक्रिया है?
0: देखिए सर, ऐसा है कि स्टोन की साइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
1: जी
0: अगर स्टोन की साइज लगभग 7 mm से छोटी है
1: जी
0: तो पानी पीने से, कोई जड़ी बूटी खाने से, कोई दवाई लेने से निकल सकता है।
1: जी
0: लेकिन अगर साइज बड़ी है तो फिर रास्ता जो है संकरा होता है, तो ज़्यादा साइज की पथरी नहीं निकल पाती है। तो लोगों को कोई भी उपचार लेने से पहले सोनोग्राफी जो करवाते हैं उस पर साइज लिखी रहती है, या
1: जी
0: चिकित्सक से पूछ भी सकते हैं। तो पूछ कर ये निश्चित कर लें कि 1 cm से छोटी पथरी है, तभी जो पारंपरिक तरीके हैं या फिर कोई दवाई से बोलता है कि निकाल देंगे, किसी पाउडर को पीने से निकल जाएगा, कोई सिरप पीने से निकल जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं,
1: जी
0: तो तभी उनका प्रयोग करना चाहिए। और पथरी निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी की मात्रा अधिक रखना। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना होगा,
1: जी
0: तभी कोई दवाई काम करेगी।

0: पाउडर को पीने से निकल जाएगा, कोई सिरप पीने से निकल जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं
1: जी।
0: तो तभी उनका प्रयोग करना चाहिए। और पथरी निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी की मात्रा अधिक रखना, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना होगा तभी कोई दवाई काम करेगी। अगर सिर्फ पानी भी 3 से 4 लीटर पियेंगे और कोई दवाई नहीं लेंगे तो भी पथरी निकल सकती है, लेकिन कोई भी दवाई लेंगे और पानी कम रखेंगे तो पथरी नहीं निकलेगी
1: जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम जड़ी बूटी या घरेलू नुस्खों की बात करें या जो ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की दवाई देते हैं जिनकी प्रमाणिकता पे शक है, तो क्या उसके नुकसान, दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, अगर लंबे समय तक पथरी फंसी रह गई, लंबे समय तक किडनी के अंदर पथरी रह गई तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं और जो धीरे धीरे करके किडनी को ख़राब भी कर सकते हैं। साल में कम से कम 8 से 10 केस ऐसे ज़रूर आते हैं हमारे पास में जिनको पथरी की वजह से किडनी निकालना होता है, और इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि पथरी बहुत लंबे समय से थी, वो लंबे समय से थे, कोई पारंपरिक दवाई ले रहे थे, वो बार बार आके सोनोग्राफी भी करवाते थे, साइज चेक करते थे, उसके बाद फिर से दवाई लेते थे, ऐसे करके धीरे धीरे करके उनकी किडनी ख़राब हुई है और निकालना पड़ता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि छोटी पथरी में तो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी पथरी जिसमें सोनोग्राफी में बता रहा है कि किडनी में काफ़ी सूजन हो गई है, किडनी के अंदर मवाद हो गया है, या आपको बार बार दर्द हो रहा है, या पथरी की साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे में पारंपरिक तरीकों में जो हमारे श्रोता जो सुन पा रहे हैं उनको यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा समय व्यर्थ न करके किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, आगे आपसे और भी बातचीत करेंगे और यूरोलॉजी से संबंधित विभिन्न बीमारियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय हो गया है कि एक गीत सुनते चला जाए, तो कोई आपका पसंदीदा गीत हो तो बता दें।
0: जी सर, एक सारस्वत चंद्रा का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, चंदन सा बदन।

0: यूरोलॉजी से संबंधित विभिन्न बीमारियों के बारे में, और मुख्य रूप से हम स्टोन की बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार स्टोन की समस्या लोगों को होती है, वो उसका इलाज कराते हैं और ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद स्टोन की समस्या उनके अंदर देखने को मिलती है, तो इसका क्या कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है?
1: ऐसा स्टडीज़ में बताया गया है कि जिन लोगों को एक बार स्टोन होता है
0: जी,
1: तो अगले 5 सालों में 50% चांस रहता है कि दोबारा स्टोन हो जाएगा
0: जी।
1: इसका मुख्य कारण रहता है हमारा जेनेटिक मेकअप। हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि जो यूरिन होता है एक तरह से नमकीन मिश्रण है
0: जी।
1: तो उसमें उसकी घुलनशीलता को प्रभावित करते हैं जो सॉल्ट्स होते हैं, जो उसमें नमक होते हैं यूरिन में, उसकी घुलनशीलता जब ज़्यादा रहती है तो वो यूरिन के माध्यम से निकलते रहते हैं, और जब घुलनशीलता नहीं होती तो उनमें पथरी बनने लगती है। तो शरीर के अंदर के एंजाइम्स बहुत बड़े कारक हैं, और इसके साथ साथ में खान पान का परहेज कई लोग नहीं कर पाते हैं। ये बहुत कहना आसान है कि हम नमक कम खाएंगे, शक्कर कम खाएंगे, लेकिन जो आदत रहती है व्यक्ति की वो बहुत मुश्किल से छूटती है। तो ये भी कारण है, पानी ज़्यादा पीते रहें, नमक कम खाएं, शक्कर का प्रयोग कम करें, एक्सरसाइज करते रहें, तो ये जो प्रतिशत 50 है वो 20 से 30 तक आ सकता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता
0: जी। खान पान की बात की आपने, और बहुत तरह के परहेज को लेकर लोगों में एक आशंका भी है और गलतफहमी भी है, तो खान पान में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ खाना चाहिए जिनको पथरी की समस्या है, और क्या क्या नहीं खाना चाहिए?
1: वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य तौर पे 3 चीज़ अगर ध्यान में रख लें, पानी ज़्यादा पीना है
0: जी,
1: नमक कम खाना है, शक्कर कम खाना है
0: जी,
1: क्योंकि इसके बाद की जो लिस्ट है उसकी प्रामाणिकता पे संदेह है
0: जी।
1: बहुत लोग बोलते हैं कि पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि कोई दूध नहीं पीना है, बल्कि दूध के बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि दूध पीने से पथरी नहीं होती। दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है
0: जी,
1: लेकिन जो कैल्शियम हम भोजन के साथ लेते हैं उससे पथरी नहीं होती। कैल्शियम सप्लीमेंट्स अलग से लेने से पथरी होने का चांस रहता है
0: जी।
1: तो ऐसी स्त्रियां, खासकर जो गर्भावस्था में हैं या जो स्तनपान करवा रही हैं, उनको कैल्शियम लेना ज़रूरी भी रहता है
0: जी।
1: तो ऐसे लोगों को कैल्शियम की गोली भोजन के साथ ही लेनी चाहिए
0: जी,
1: तो उनको भी उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो भी भोजन हम लेते हैं उसमें ऑक्जेलेट रहता है, और अगर हम कैल्शियम साथ में लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट इंटेस्टाइन के अंदर ही मिल जाता है, तो बहुत कम मात्रा में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है
0: जी, जी।
1: तो शरीर के काम भी आ जाता है और पथरी बनने लायक मात्रा में भी नहीं पहुंचता है
0: जी। एक और बात सुनने को मिलता है कि अगर आपके पानी में पत्थर के कण या जो बालू के कण होते हैं वो ज़्यादा होने से भी पथरी होता है, तो इसकी क्या सत्यता है? पानी के शुद्ध होने और नहीं होने से पथरी पर कोई असर पड़ता है?
1: इसके बारे में जो रिसर्च है उसके कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हैं
0: जी।
1: जैसे ये माना गया कि जो लोग आरओ पानी पीते हैं उनमें पथरी क्या कम होती है बनस्पत उन लोगों के जो लोग आरओ का पानी नहीं पीते हैं
0: जी।
1: तो ऐसा कोई अंतर अभी स्टडीज़ में आया नहीं है
0: जी।
1: तो एक दो स्टडीज ऐसी भी हैं कि बल्कि जो हार्ड वाटर है जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है
0: जी, जी।
1: उसको पीने वालों को पथरी कम होती है। तो ये पानी की शुद्धता के बारे में तो कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला है अभी तक रिसर्च
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: लेकिन आमतौर पे पानी की मात्रा पे निष्कर्ष है कि अगर आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो पथरी होने का चांस कम रहेगा
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने पथरी के अलावा एक प्रोस्टेट की समस्या के बारे में बात की थी, तो ये प्रोस्टेट की समस्या क्या है?
1: प्रोस्टेट असल में एक नॉर्मल अंग है जो हर पुरुष में रहता है, महिलाओं में नहीं होता
0: जी।
1: और उम्र के साथ में इसमें वृद्धि होती है, इसकी साइज ज़्यादा होती रहती है
0: जी।
1: और लगभग 40-45 साल के बाद में इसकी साइज में इतनी वृद्धि हो जाती है कि लोगों के पेशाब के रास्ते में अंतर लाने लगता है, थोड़ा सा दबाने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब की धार पतली होने लगती है, पेशाब बार बार आती है, पेशाब रुकने जैसी समस्याएं होती हैं। और जैसे जैसे आदमी की एज ज़्यादा होती है तो ये समस्याएं उसको ज़्यादा घेरने लगती हैं
0: जी।
1: तो प्रोस्टेट को एक सामान्य एजिंग की बीमारी मान सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन इससे होने वाली परेशानियों के लिए इलाज है, दवाइयाँ भी हैं, ऑपरेशन भी हैं। तो अगर किसी को पेशाब की संबंधी समस्याएं हो रही हैं, खासकर 40 साल के बाद पेशाब में जलन हो रही है, बार बार रात में उठना पड़ रहा है, खासकर 2 बार से ज़्यादा, या फिर पेशाब लगने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ पेशाब बचा रह गया, पेशाब की धार जो पैरों से दूर गिरती थी जब खड़े होकर पेशाब करते थे पैरों के पास आके गिरने लग गई है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए
0: जी। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो किस तरह के इलाज होते हैं प्रोस्टेट की समस्या अगर किसी को है तो?
1: प्रोस्टेट की समस्या से ग्रस्त 80 से 90% लोगों का आज के दौर में दवाओं से इलाज संभव है
0: जी।

एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का हमारे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम जीवन सुधा में। और आज हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं

0: उनको दवाई खानी होती है, अल्फा ब्लॉकर्स करके आते हैं,
1: जी
0: वो दवाई देने से 70 से 80% लोगों की समस्या दूर रहती है, कंट्रोल में रहती है।
1: जी
0: लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एजिंग की समस्या है,
1: जी
0: जैसे कि आपके बाल अगर एक बार सफ़ेद हो गए उम्र की वजह से तो वो काले नहीं हो सकते।
1: बिल्कुल
0: अगर आपके आँखों में मोतियाबिंद हो गया तो पहले जैसी आँख नहीं होगी, दांत टूट गए तो दोबारा नहीं आ सकते, लगाने पड़ेंगे।
1: जी
0: तो इसी तरह से इसकी दवाइयाँ आपको खाते रहनी होंगी,
1: जी
0: या तो फिर अगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, 10 से 20% लोगों में ऐसा भी होता है, तो उसमें ऑपरेशन भी विकल्प रहता है। आजकल दूरबीन पद्धति से, लेजर पद्धति से, बिना किसी चीर फाड़ के ऑपरेशन प्रोस्टेट का संभव है और किसी
1: जी
0: भी उम्र में संभव है।
1: क्या इसमें लाइफस्टाइल का कोई रोल होता है इस बीमारी को लेकर?
0: बिल्कुल, प्रोस्टेट का एक बहुत बड़ा, बहुत कॉमन लक्षण यह होता है कि बार बार पेशाब लगती है,
1: जी
0: और बार बार पेशाब लगने के कुछ कारण ऐसे हैं जो खान पान से रोके जा सकते हैं, जैसे ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाना,
1: जी
0: शराब का सेवन कम करना, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना, रात में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना, ये सब करने से लक्षणों में कुछ हद तक फायदा होता है।
1: जी
0: साथ ही जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा पाया गया है कि उनमें प्रोस्टेट वृद्धि धीरे धीरे होती है,
1: जी
0: और यूरिन लगने के बाद में जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो बाथरूम तक जल्दी पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो चलते फिरते ज़्यादा रहते हैं, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों को मूत्र संयम, जिसको बोलते हैं कि इनकंटिनेंस हो गया है, यूरिन लीक हो गया,
1: जी
0: ऐसी समस्याएं बुज़ुर्गों में होती है। तो जो बुज़ुर्ग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने युवावस्था में, वो लोग इस समस्या से कम पीड़ित होते हैं।
1: ऐसा माना जाता है कि अगर आपको शुगर की समस्या है तो भी बार बार आपको यूरिन लग सकती है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये प्रोस्टेट की समस्या है या शुगर की वजह से मुझे बार बार जाना पड़ रहा है? क्या ये दोनों लिंक्ड हैं?
0: दोनों पूरी तरह से तो लिंक नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अलग भी नहीं है। अगर
1: जी
0: मान लीजिए किसी को शुगर की बीमारी है,
1: जी
0: तो एक तो शुगर टेस्ट से पता चल जाएगा कि है
1: जी
0: कि नहीं है,
1: जी
0: और अगर शुगर पॉजिटिव भी आता है, डायबिटीज़ है भी उसको, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है।
1: जी
0: तो दोनों, शुगर अगर कंट्रोल है और उसके बाद भी अगर यूरिन बार बार लग रहा है, तो निश्चित रूप से यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, एक्सपर्ट से मिलना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से समय हो गया है कि एक गीत सुनते चला जाए, तो इस बार कौन सा गीत सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं को आप?
0: इस बार मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ, जो हमारे कॉलेज के टाइम पे एक मूवी आई थी, कुछ कुछ होता है, तो
1: जी
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुनाना चाहूँगा मैं।
1: जी आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं हमारे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम जीवन सुधा में, और डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम प्रोस्टेट की समस्या पर बात कर रहे थे इस गीत से पहले, और एक और समस्या अक्सर देखी जाती है मूत्र संयम की, और जो कि महिलाओं की समस्या है, तो ये क्या समस्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मूत्र असंयम की जो समस्या है वो पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो जो मनुष्य है
0: जी,
1: जब बच्चा रहता है तो जब उसको यूरिन लगती है तो कहीं भी यूरिन कर देता है, बाद में फिर धीरे धीरे जब उसका दिमागी विकास होता है तो उसको ये पता चलता है कि ये सही समय नहीं है, ये उचित स्थान नहीं है, और उसको उचित स्थान तक जाने तक यूरिन को रोक सकता है। तो मूत्र संयम ऐसी अवस्था है कि जब उसको पता है कि स्थान उचित नहीं है लेकिन वो यूरिन रोक नहीं पा रहा, उसकी यूरिन अपने आप निकल जाती है
0: जी।
1: ये खासकर बुजुर्गों में ज़्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर के कोने में बुजुर्ग की एक खाट लगी रहती है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, थोड़ी यूरिन की बदबू आती रहती है क्योंकि वो मूत्र संयम से ग्रस्त होता है
0: जी।
1: तो मूत्र संयम से ग्रस्त जो बुजुर्ग रहते हैं, एक सामाजिक समस्या भी है ये
0: जी, जी।
1: वो एक तरह से धीरे धीरे करके समाज से कटने लगते हैं, वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से बचते हैं, उनको डर लगता है कि उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, बदबू आएगी, एक अशोभनीय सा वातावरण बनेगा
0: जी, जी।
1: शर्म आएगी
0: जी।
1: तो इसकी वजह से वो लोग बचने लगते हैं, धीरे धीरे करके कटने लगते हैं
0: जी।
1: जिससे उनका फिर जो मानसिक स्तर है वो धीरे धीरे करके और कम होने लगता है। तो इस तरह से बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है जिन लोगों में ऐसा होता है
0: जी।
1: लेकिन अच्छी बात यह है कि 70-80% लोगों का इलाज संभव है दवाइयों से, और इससे अपन बच सकते हैं। तो मूत्र संयम एक सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है
0: जी।
1: और इसमें परिवार के सदस्यों का बहुत अहम रोल है कि अगर परिवार के लोगों को, खासकर बुजुर्गों को, इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है कि यूरिन लीक हो जा रहा है। हमारे सरगुजा में अक्सर लोग आते हैं, मुझसे कहते हैं कि इनका यूरिन डायरेक्ट हो गया है
0: जी, जी।
1: तो अगर ऐसा किसी को है तो डॉक्टर के पास ले आएँ, 70-80% चांस है कि वो ठीक हो सकते हैं, और इस तरह से उनका जो सामाजिक कटाव है वो कम रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, किडनी से संबंधित बहुत सारी बीमारियों पर चर्चा हुई और आपने बहुत सारी जानकारियां दी, अंत में एक सामान्य बातें किडनी के बारे में जानना चाहूँगा कि अगर मुझे अपने किडनी को स्वस्थ रखना है तो वो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, मुझे क्या क्या खाना चाहिए, और कैसे मैं अपने आप को, किडनी के बारे में अगर बात करूँ तो अपनी किडनी को कैसे मैं स्वस्थ रख सकता हूँ।
1: किडनी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है
0: जी।
1: और इसका मेन काम रहता है कि खून को स्वच्छ करना
0: जी।
1: एक खून को छानने का काम करता है, खून की जो गंदगी है यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है
0: जी।
1: तो किडनी स्वस्थ रखने के लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भरपूर पानी पीना
0: जी।
1: दूसरी चीज़ है कि हम ऐसे पदार्थों का सेवन कम से कम करें जो टॉक्सिन लोड ब्लड में बढ़ाते हैं, जैसे कि नशा है, तम्बाकू का नशा है, शराब का

0: अच्छा है, इन चीज़ों से का सेवन कम करना चाहिए। बाकी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जैसे हाई लेवल का प्रोटीन, खासकर जिम जाने वाले बच्चे कई बार बॉडी बनाने के चक्कर में प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
0: तो अगर प्रोटीन लोड किडनी में ज़्यादा रहता है या ज़्यादा मात्रा में मांसाहार भी उसमें शामिल है, या फिर सोया बीन के जो चिप्स आते हैं वो भी बहुत सारे लोग खाते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो अधिक मात्रा में अगर अपन प्रोटीन लेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, लगभग एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता रहती है उसके बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि कोई 70 किलो का आदमी है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए
1: जी।
0: अगर उससे अधिक मात्रा में लगातार ले रहे हैं तो किडनी पे अतिरिक्त भार आएगा, तो धीरे धीरे करके किडनी खराब हो सकती है
1: जी।
0: इसके अलावा नमक की मात्रा कम रखना अपना, अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको बीपी कंट्रोल में रखना, शुगर की बीमारी अगर डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल में रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपसे स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बार फिर से समय हो गया है हम कुछ मनोरंजन करते चलें, श्रोताओं को कुछ सुनाते चलें, और इस बार मैं गीत सुनाने के लिए नहीं कहूँगा आपसे, बल्कि चूँकि आप एक अच्छे साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस बार आप कुछ कविताएँ हमारे श्रोताओं को सुना दें।
0: सर, एक ये गज़ल तो नहीं है पर गजल की शैली में लिखी गई है
1: जी।
0: सबकी गलती गिनाने से क्या फायदा, सबकी इज्जत गिराने से क्या फायदा, जब हो सकता नहीं कोई बदलाव तो यूं ही नारे लगाने से क्या फायदा।
1: क्या बात।
0: जब वो सुनता नहीं मेरे दिल का कहा, उसको दिल की बताने से क्या फायदा, और जिनका हालात पर कोई काबू नहीं उनको आंखें दिखाने से क्या फायदा। आंसू धोते नहीं जो है जग में बुरा, फिर आंसू बहाने से क्या फ़ायदा, और जो हम किसी से मिलें पर न दिल से मिलें, ऐसे मिलने मिलाने से क्या फ़ायदा।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: मैं पौधा हूँ आभावों का, मैंने बंजर से जल खींचा है, मैं पौधा हूँ आभावों का, मैंने बंजर से जल खींचा है, स्वयं सिद्ध है मेरा होना, मुझे किसी माली ने नहीं सींचा है, मिटा सकोगे मेरी हस्ती ऐसी मत हसरत पालो, तूफानों तक झुक कर रहने का आता मुझे सलीका है।
1: बहुत खूब डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई। ऐसा लग रहा है कि कविता सुनते रहें, लेकिन समय की सीमा है और कार्यक्रम को निश्चित समय में हमें समेटना होता है, तो आज हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ दी। विशेष रूप से मूत्र तंत्र से संबंधित बीमारियां और उनके इलाज के बारे में हमने चर्चा किया, और अवश्य ही हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुनेंगे वे आपके द्वारा दी गई जानकारियों से लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, इन दोनों बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में हमें फिर मौका मिलेगा और फिर आपसे बैठेंगे
0: जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य पत्रिका जीवन सुधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मूत्र तंत्र से संबंधित रोगों और उनके निदान पर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार से परमेंद्र कुमार की बातचीत। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। नमस्कार, आज गुंजन कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त संजय। श्रोताओं, बातों और गीतों के इस पसंदीदा कार्यक्रम में बातें होंगी,

और ज़रूर होंगी। पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में गाए फिल्म लावारिस के इस गीत के साथ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर प्रखर राष्ट्रवादी समाज सुधारक और साहित्यकार थे। इनका जन्म 28 मई सन 1983 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उनकी जयंती पर आज का दिन देशभक्ति, साहस और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का दिन भी है। सावरकर बचपन से ही तेजस्वी और देशभक्त थे, जिनका उद्देश्य भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराना था। उन्होंने युवावस्था में ही अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। अंग्रेज सरकार ने उनके क्रांतिकारी विचारों से भयभीत होकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कालापानी की सजा दे दी। अमानवीय यातनाएं सहकर भी उन्होंने देश प्रेम और साहस को कमजोर नहीं होने दिया। कई कविताएं और लेख लिखने वाले सावरकर ने जातपात और अस्पृश्यता का विरोध भी किया। उन्होंने समाज में एकता और समानता का संदेश दिया, साथ ही वे विज्ञान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के समर्थक थे। हमारी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे क्रांतिकारियों के संघर्ष का ही परिणाम है जो हम और आप आज आज़ाद भारत के नागरिक हैं। अब आइए श्रोताओं, कार्यक्रम गुंजन में सुनते हैं अगला गीत फिल्म कर्मा से। इस गीत में आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?

0: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आज विश्व भूख दिवस है। विश्व भूख दिवस प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में भूख और कुपोषण की गंभीर समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। आज भी विश्व में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। ये स्थिति मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। भूख केवल भोजन की कमी नहीं, अशिक्षा का परिणाम भी है। अनेक देशों में लोग प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट के कारण भूख का सामना करते हैं। विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं कुपोषण का अधिक शिकार होते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भूख मिटाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। जीरो हंगर अभियान का उद्देश्य विश्व से भूख और कुपोषण को समाप्त करना है। सरकारों के साथ साथ समाज और प्रत्येक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि भोजन की बर्बादी रोकें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। विश्व भूख दिवस हमें ये संदेश देता है कि भोजन हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। हमें किसानों का सम्मान करना है, खाद्यान्न का सही उपयोग करना और ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँचाने में सहयोग देना है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो भूख जैसी समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। विश्व भूख दिवस मानवता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसा समाज बनाएं जहां कोई व्यक्ति भूखा न सोए। आइए कार्यक्रम गुंजन में अगला गीत सुनते हैं, फिल्म ज्वार भाटा से। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं।
6: समझो और समझाओ थोड़ी में।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। ईद उल अजहा, जिसे हम बकरीद कहते हैं, मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है। ये धार्मिक पर्व हमें प्रेम, त्याग, बलिदान और मानवता का संदेश देता है। ईद उल अजहा का यह पाक दिन सिर्फ धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और मानव सेवा का प्रतीक भी है। इस अवसर पर इसे मनाने वाले ज़रूरतमंदों को की सहायता करते हैं और समाज में प्रेम और सद्भाव का संदेश पहुंचाते हैं। ये पर्व त्याग और निस्वार्थ सेवा की भावना को मजबूत करता है। इन बातों के ही साथ आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं।

मन्ना डे और साथियों का गाया अभी फिल्म सीमा का गीत अभी हमने सुना। श्रोताओं, कार्यक्रम गुंजन में अब बातें करते हैं आत्मविश्वास पर। आत्मविश्वास हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं, निर्णयों और प्रयासों पर भरोसा रखना। ये ऐसा मानसिक बल है जो असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम असफलताओं से घिर जाते हैं। ऐसे समय में आत्मविश्वास ही हमें टूटने से बचाता है। फिर से पुनः प्रयास करने की प्रेरणा भी आत्मविश्वास देता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति न तो जल्दी हार मानता है और न ही परिस्थितियों से डरता है, बल्कि वह चुनौतियों का सामना साहस के साथ करता है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हम में आत्मविश्वास की कमी है तो हमारी प्रतिभा और ज्ञान पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। कार्यक्रम गुंजन में अगला गीत सुनते हैं फिल्म मिशन कश्मीर से। इस गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति छोटे अवसरों को भी बड़ी सफलता में बदल सकता है। आत्मविश्वास केवल जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से विकसित किया जा सकता है।

स्वयं पर विश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें पूरा करना और अपनी गलतियों से सीखना बहुत आवश्यक है। विद्यालय, खेल, नौकरी या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास हमें अलग पहचान दिलाता है। यह न केवल सफलता दिलाता है बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। यह कहा जा सकता है कि आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें आगे बढ़ने, सीखने और सफल होने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें अपने भीतर

ये कहा जा सकता है कि आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें आगे बढ़ने, सीखने और सफल होने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म दिल तो पागल है से। इस गीत में आवाज़ें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की।

0: दिल तो पागल है। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी हमने ये गीत सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत उत्तम सिंह का था।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
0: श्रोताओं, पर दुख कातरता, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ है दूसरों के दुख को देखकर संवेदनशील होना, उनके कष्ट को महसूस करना और उनकी सहायता के लिए आगे आना। ये मानवीय गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुणों में से एक माना जाता है। ये गुण व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। आज के समय में जब भौतिकता और व्यस्त जीवन शैली बढ़ रही है, तब लोगों में संवेदनशीलता की कमी देखी जा रही है। ऐसे में पर दुख कातरता का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाता है। पर दुख कातरता हमें दया, करुणा और सेवा की भावना से जोड़ती है। ये गुण समाज में सहयोग, प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। जब लोग एक दूसरे के दुख में सहभागी बनते हैं, तो समाज अधिक मजबूत और सुखद बनता है।

0: छैया।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
2: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
1: चलिए बनाए एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा।
3: श्रोताओं, इतिहास और साहित्य में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां महापुरुषों ने पर दुख कातरता का परिचय दिया और समाज सेवा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। ये गुण हमें स्वार्थी बनने से रोकता है और दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। विद्यालयों और परिवारों में बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि वे दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। इससे एक अच्छे और संस्कारी समाज का निर्माण होता है। पर दुख कातरता केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जीवन मूल है। ये हमें बेहतर इंसान बनाती है और समाज को मानवता की दिशा में आगे बढ़ाती है। गुंजन कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म बादशाह का ये गीत। आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की हैं।

0: बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन अभी हम सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम अपने रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर इस संबंध में की गई मांग को स्वीकार किया था, जिसके बाद अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

0: बैठक में श्रीमती कंगाले ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं, राज्यवार भागीदारी तथा प्रस्तुतियां शामिल होंगी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थान तथा अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आज से जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में शुरू हो गई है। कल 29 मई तक चलने वाले इस ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि योजना के तहत संस्थाओं के इम्पैनलमेंट और कक्षा छठवीं में प्रवेश की प्रक्रियाओं में वर्तमान में विलम्ब हो रहा है। इसी कारण प्रवेश प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले नियमित संकाय सदस्यों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल 29 मई से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आकाशवाणी रायपुर से रिले किए गए। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए अब हम आपको तापमान संबंधी सूचना दे दें। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान की सूचना समाप्त हुई। फोन इन कार्यक्रम गांव का गीत हम थोड़ी ही देर में सुनेंगे। उससे पहले आज की दोपहर में और हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों का विवरण अब हम आपको दे दें। एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुनिएगा आज दोपहर 12 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुनेंगे आज शाम 5 बजे। सरगुजिया लोकगीतों का आनंद लेंगे कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर। फरमाइशी लोकगीत सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम।

कार्यक्रम गांवकर गीत में अभी थोड़ी देर में सुबह के कार्यक्रम में प्रस्तुति सहायक होंगे एस धर्मेंद्र और प्रस्तुतकर्ता परमेंद्र कुमार। श्रोताओं के भेजे खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुबह 11:05 पर और कार्यक्रम मन भवन रात 10:30 पर आप सुन सकेंगे। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। शहरी माताएं और बहनें सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:10 पर। बातचीत का विषय होगा पानी की स्वच्छता है जरूरी और लू से बचें। साथ ही क्रम होगा गुलदस्ता और घरेलू नुस्खे आपको बताए जाएंगे। आपके भेजे ईमेल से सजा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:40 पर और रात 9:30 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का लुत्फ उठाइएगा कार्यक्रम गीत गंधा में दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:30 पर जिसमें युवा साथी सुन सकेंगे युवा सोच और महफिल। किसान भाइयों और ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर और किसान वाणी का समय है शाम 7:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आज रात 10:00 सुनिएगा श्री हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाए राग दुर्गा। कार्यक्रम भजन संध्या में गैर फिल्मी भजन और फिल्मी भजन सुनेंगे शाम 5:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी शाम 6:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रजनीगंधा में शाम 7:05 पर। फिल्मी गाने सुनेंगे चित्रपट संगीत में रात 9:15 पर।

श्रोताओं अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहायक हैं एस धर्मेंद्र और प्रस्तुत करता हैं परमेंद्र कुमार।

0: गांवकर भी
1: राउर मनकर मन लगा कार्यक्रम में एक दफे फिर हाजिर हूँ मैं राउर मनकर संता राउर मनकर धर्म भैया। जैसे राउर मन जोहत रथी ना कि कब मंगल रोज आए और अपन मन लगा गीतला फरमाइश करके सुन सकी, वैसने हम मन जोहत रथी कि कौन कौन हमर श्रोता मन कर ए दफे फोन आते। दुरिया दुरिया ले राउर मन फोन करती और हमला बहुत बढ़िया लगेल कि हमर जो श्रोता है कतना दुरिया दुरिया से और कतनो काम बुता रहे बाकी अपन फरमाइश कर गीतला जरूर सुनते फरमाइश करके। राउर मन ठन गोट बात होत हवे और देखी एक ठन फोन आत हवे तो झोकल जाए कि ये पहिल फोन कौन श्रोता कर हवे।
2: हेलो,
1: गांव कर गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राहुल कर।
2: राम राम भैया।
1: राम राम, जय जोहार, परिचय बताइए। राजकुमार जी हमारे नियमित श्रोता हैं और पहिल फोन इनकर लगी सर, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी राहुल कर।
2: जी भैया, और सब बने बने भैया?
1: सब बने बने।
2: तो इच्छे मन के मन मोहनी गाना सुना भैया।
1: बहुत बढ़िया सुगर पसंद है राउर कर।
2: हाँ,
1: राउर कर पहला फोन है और बड़ा मन लगा गीत ला राउरे जो है फरमाइश करे ही।
2: हमन आयरन भैया मैराथन दौड़ में आकाशवाणी अम्बिकापुर घूमे भर।
1: हाँ,
2: तो मैं हमन शामिल हो रहे भैया।
1: हाँ,
2: और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है उसके, बहुत अच्छा लगे उसके, सब जो सब से मिलना हुई भैया हो जाए।
1: हाँ, हमन तो रहन भाई राउर के देखे भी रहन, मिल मुलाकात हो रही, बहुत बढ़िया लागिस।
2: हाँ भैया, मैं एक दूसरे साथी मन के नाम लेते भैया
1: जरूर ले।
2: मोर साथी प्रेम से राजवाड़े और मानिक।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गांवकर गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत थी राउरकर।
1: धन्यवाद सर।
0: परिचय बताइए अपन।
1: राम कुशल पटेल सर, हैदराबाद से।
0: राम कुशल जी, स्वागत है राउरकर हमारे कार्यक्रम गांवकर गीत में।
1: धन्यवाद सर।
0: तब सब बताइए, हाल चाल बने बने?
1: हाल सर सब बढ़िया सर, गर्मी भयानक बढ़ गई इधर है।
0: हाँ भाई, अब तो नौतपा कर देखी, दूसरा दिन हवे।
1: हाँ सर, नौतपा लग गए ना, दूसरा दिन है आज तो।
0: हाँ, यही समय तो भाई अपन रंग ला दिखायल ना, गरम हर ओकर बाद बरखा। हाँ, कर शुरुआत होल।
1: आप मन के कार्यक्रम मत बहुत अच्छा लगते सर, हर कार्यक्रम सुना सना मन मोबाइल के ऐप से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद है राउला, और पसंद आये ये तो बहुत अच्छा बात हवे।
1: जितना अपना साथी है पूरा मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर दे, सब अपन अपन मोबाइल में सुना थे सर आप मन के कार्यक्रम ला। और दो चार दोस्त तक नाम लेना चाहता हूँ सर।
0: बिल्कुल।
1: रामनु साहू जी है, जितेन मरखाम है, भानु यादव जी है, और मनोज साहू, छोटकू साहू, पवन सेन जी है, रोशन निवांगन है।
0: तो सब जन मिल के रेडियो सुनती?
1: हाँ सर।
0: बहुत बढ़िया बात हवे। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहे?
1: कोई भी सुना दे सर।
0: तो लगी सुनी राउर बार, ये बड़ा सुघर।

0: कार्यक्रम।
1: हाँ, अभी गांव का गीत कार्यक्रम में लगाए हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है राउरकर।
1: हाँ, मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोला था।
0: मधुसूदन भाई स्वागत है राउरकर, बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो सब बने बने?
1: सब बने बने भैया, कहा वजह खेते बात हो कही है ना, बुद्धि लगा रहे हैं। लोरे की तैयारी चला थे कहा।
0: अच्छा,
1: तो कहा है कि अभी धूप है तो थोड़ा सिंहाए हूँ धूप में, अभी 4 बजे के बाद फिर भीड़ हूँ काम में।
0: हाँ भाई, नौतपा है कटिक ज्यादा धूप है।
1: तो नौतपा है तो भाई हमन लगा अपन स्वास्थ्य ला भी ध्यान देना है,
0: बहुत जरूरी है भाई। जांगर बढ़िया रही तबे तो खेती पाती चाहे आने बूता हो।
1: हाँ, जांगर बढ़िया रही तो खेती पाती की कोनो चीज हमन कर सकती ना, और जांगरे बढ़िया रही तो कहाँ ले हमन कुछ भी काम न कर कहीं चीज ना।
0: बिल्कुल ध्यान करना है भाई, अपन भी ध्यान करना है, घर कर और लड़का छुआ मन सियान मन ला भी ध्यान करना है। तो कौन सा गीत सुनना चाहे आज मधुसूदन जी?
1: तो भी आज सुना दी है विजय सिद्धार्थ कोई भी गीत ला सुना दी है।
0: बढ़िया पसंद है राउरकर, लेकिन सुनी तो राउरकर पसंद कर ये विजय सिरदार जी कर गाल बड़ा सुघर गन गीत।

0: हेलो।
1: राम भैया।
0: राम राम, जय जोहार।
1: हाँ, मैं नानघाट कातल बोल बोला था भैया, भाग सिहराजपुर।
2: स्वागत है राउरकर।
1: धन्यवाद भैया।
0: तब भाग सिंह जी
1: भाई गे अभी घरे में रह चलत है भैया, धूप के नाले के।
0: हाँ, जब एकदम हाँ। ज्यादा जरूरी हो ना तभी ही कर लिया।
1: हाँ हाँ, सवेरे सवेरे थोड़ा बहुत जाता ना भैया खेत, एक आध दो घंटा बाद घर में आके बस कूलर के हवा ले बैठे रही थे।
0: हाँ भाई, ये समय जागर ला देखभाल करना जरूरी है।
1: हाँ भैया,
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहब?
1: बाग बगीचा दिखेला हरियर वाले गीत।
0: अच्छा, तो लेकिन सुनी बड़ा सुघर अकन पसंद है राउरकर, बहुत बढ़िया गीत हवे। सुनी राउरकर पसंद करे सुघर अकन गीत।

0: हेलो,
1: हेलो गांव कर गीत।
0: राम राम भैया।
1: राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार। मैं मुन्ना लाल पटले बोला था, डोंगरिया मलाकसन जिला बालाघाट।
1: बहुत बहुत स्वागत है रावरकर
0: जी। भैया धन्यवाद।
1: सब बने बने ना?
0: हाँ भैया, बस नौतप्पा चला थे तो घर में टाइम पास करा थन, बस खेत खार जाथन, गाय गरु आते तो बस दूर भगाए और फिर चले आ जाथन।
1: ठीक करता।
0: कुछ देर पेड़ के छाव में बैठ के थिरा ले थन, फिर चले आ जाथन घर मगा।
1: हाँ ठीक बात है भाई, ये समय जो है ना, हाँ कटिक पानी पीते रहना है और ध्यान करना है।
0: हाँ बिल्कुल, पानी पीना है और जहाँ तक हो सके का है, एक छोटा सा प्याज कथिन साथ में रखे रहो तो लू लगे के खतरा कम रहते।
1: तब घर कति भी सब बने बने है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी सब बने हैं।
1: तो आज कौन सा गीत सुनना है?
0: केदार यादव की सुना दो।
1: अच्छा तो लेकिन सुनी अपन पसंद कर ये केदार यादव जी कर गाल सुघर कन गीत।
0: मो संगवारी मतलब ले लो का संग में।
1: जरूर जरूर।
0: हाँ, ध्रुवा राम साहू जी कन्या दमो से है, गंडई से पवन सेन, जागेश्वर देवांगन जी और दुर्ग से सुरित रामेश साहू।
1: तो लेके सुनी राउरकर, और राउरकर जो संगता मान है उनकर पसंद करिए सुघर कन गीत।

0: हेलो, कार्यक्रम गांव कर गीत।
1: राम राम भैया, जय जोहार।
0: जय जोहार, राम राम।
1: सुरेश कुमार सारथी बोला था भैया, बेमे तरा ले।
0: हाँ सुरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है राउर कर।
1: और गर्मी कैसे है भैया उधर?
0: गर्मी तो नौतप्पा चलता है तो है। अच्छा, कहा की
1: प्रचंड गर्मी है। विकट गर्मी भैया, 45-46 डिग्री तापमान हवा है। घर ले निकले के हिम्मत नहीं हुआ है।
0: राउर मन कति तो कटिक ज्यादा है, हमारे उतना बेसी नहीं है।
1: गर्मी है बहुत, फिर अभी मौसम बदला से 2 दिन हो गए भैया।
0: हाँ।
1: शाम के समय थोड़ा तेज हवा पानी के साथ थोड़ा बूंदाबांदी हो जाते है। 2 दिन हो गए थोड़ा चेंज हो जाते है शाम कन।
0: हाँ, हर दफे तो नवतपा में कटिक
1: थोड़ा सा राहत मिल जाते है।
0: नवतपा कर तो आते रहे
1: तो ऐसा। अब गर्मी के मौसम में भैया हमला तो अपन सेहत के ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बहुत ज्यादा जरूरी।
1: तेल फूल वाले, नमक मिर्ची वाले, मसालेदार वाले युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए भैया। खीरा, ककड़ी, कलिंदर, शरबत, गन्ना रस, ये सब पीना चाहिए भैया।
0: बढ़िया बढ़िया संदेश है राहुल कर। कौन सा गीत सुनना चाहते हो सुरेश भाई?
1: चिटिक अंजोरी निर्मल छैया, गली गली बगराए वो पुन्नी की चंदा मोरे गाँव में, ये वाले गीत
0: तो लेगी सुनी। राहुल कर पसंद करिए सुघर अकन गीत।

0: हेलो,
1: गांव कर गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है राहुल कर, परिचय बताइए।
0: मैं ग्राम पंचायत खोनला उदयपुर ले जीवधन सिंह तगर बोला था।
1: जीवधन जी स्वागत है राहुल कर
0: जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: तब सब बने बने ना?
0: हाँ सब बने बने भैया।
1: अभी का चला था?
0: सब बने भैया। अभी
1: तो कौन सा गीत सुनना चाहब जीवधन भाई?
0: आज मौके सुना दी है गुलाब सिंह पेखर के आवाज में है, एक गाना है भैया, थोड़ा दो लाइन गा के सुना।
1: बिल्कुल सुनाई।
0: कोयली कस गुरतुर बोली तो संगवाई मो, नदिया के तीरे आबे आबे ओ राधा रानी। ये वाला गाना सुना दीजिए।
1: बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। रबरे तो सुघर गाती भी।
0: तनी मनी गा लेते भैया।
1: अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, श्रोता भी सुनी अभी राहुल कर गीत ला।
0: तनी मनी सीखे, तनी मनी गायो, तनी सीख ले हैं कि नहीं?
1: बढ़िया बात हवे। देखिए हाँ, गीत संगीत कर पसंद है तो वो कट गुनगुनाना भी जरूरी रहल।
0: नहीं
1: बहुत बढ़िया लागे जीवन जी राउर से गोट बात करके। लेकिन सुनी राउर कर पसंद कर ये गुलाब सिंह पैकरा जी कर गाल सुगरकन गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार का
0: नमस्कार, राम राम, जय जोहार।
1: योगेश डांगड़े बोला था, अभी आशीर्वाद बांधा बेमे तरह ने।
0: हाँ योगेश भाई, स्वागत है राउर कर। सब बने बने ना?
1: हाँ सब बढ़िया भैया,
0: घर कति सब बढ़िया?
1: सब ठीक।
0: और घाम कैसे है? धूप ओकति
1: बहुत बहुत धूप है भैया।
0: हाँ नो तपा कर दूसरा दिन हवे है ना, धूप तो रही
1: हाँ
0: भाई। तो बढ़िया, अपन ध्यान रखना है भाई, लड़का छवा मन कर भी, सियान मन कर भी।
1: हाँ।
0: तो कौन सा गीत सुनना चाहब आज?
1: कोई भी बढ़िया गीत सुना के हो गया, पंचराम मिर्जा जी का आवाज
0: तो लेकिन सुनी, पंचराम जी कर गा लिए सुघर कन गीत।

0: तो ये तो रहीस भाई कार्यक्रम गांव कर गीत कर आखिरी गीत। जो भी नामा श्रोता हमारे से जुटना चाहते हैं और अपन मन लगा गीत ला फरमाइश करके सुनना चाहते हैं, उनकर बर मैं अपन फ़ोन नंबर ला बता दूं। हमार फ़ोन नंबर हवे 231-917-231-918। और अंबिकापुर कर बाहर कर रहोया या फिर मोबाइल फ़ोन से जो लगाना चाहते हैं एक पहले STD कोड लगाही 077774। तो गांव कर गीत के अगले अंक में अगले हफ्ते राउरमन से फिर मुलाकात होई। राउरमन कर दोस्त धर्मो भैयाला यही जग विदा देई। ये कार्यक्रम कर प्रस्तुत करता रहिन परमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहायक रहिन S. धर्मेंद्र।
1: गांव कर
0: गीत।
2: फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। हिंदी में समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 30रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट

0: शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोलह क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नव निर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने कल देर रात यह आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर, रियाज सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

आप सभी का आपके अपने सबसे मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ, जहाँ हर गीत में बसता है सिर्फ और सिर्फ आपका एहसास, हर धुन कहती है आपके दिल के जज्बात, और यहाँ गूंजने वाला हर एक नाम जुड़ जाता है एक बहुत ही मीठे और अटूट अपनेपन के साथ। आज आपके साथ मैं हूँ स्वाति। चलिए लिए चलते हैं आपको संगीत, मुस्कान और खूबसूरत यादों के इस सुरीले सफ़र पर।

श्रोताओं, आज आपकी पसंद में हमारी जो पहली फरमाइश इन श्रोता साथियों की है, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डूमरगांव से वलीउल्लाह अंसारी और असमानाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी, बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सव्वासेरे। इसी गीत की फरमाइश है मछली गोदाम कैदी मुड़ा।

रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह। तो आइए इन सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म आजा नचले का ये गीत। आवाज़ है राहत फतेह अली खान की, गीत लिखा है पीयूष मिश्रा ने।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे फिल्म आजा नचले का ये गीत। आवाज़ थी राहत फतेह अली खान की, गीत लिखा था पीयूष मिश्रा ने। और आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। साथ ही साथ चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन। ग्राम पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर। तो आइए अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म इजाजत का ये गीत, जिसमें आवाज आशा भोसले की है, शब्द रचना गुलजार की है और संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का है।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह।

0: 0777-4230-600। ये तो सच में लकी नंबर है, तो फिर देर किस बात की। अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। तो बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। तिवरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, जयंती, मनीषा, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहेद्रीबाई, मंजू, मानसी, मनमोहन, गिरजाबाई मरकाम। ग्राम अलगीडाण पाली से चंद्रपाल मरावी, ओम प्रकाश, राम प्रकाश मरावी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, शीतल राजेश। साथ ही साथ सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान। पोत्रा से मुश्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। देवीगंज रोड अंबिकापुर से हमारे श्रोता साथी हैं राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश, पप्पू जायसवाल, सुमैया, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना। तो आइए साथियों, हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म छिछोरे का ये गीत। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इस लंबे सफर में बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो नहीं बदला है वो है आपका हमारा साथ और जुड़ाव, जिसमें आपके पत्रों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पुराने श्रोताओं के साथ साथ नए साथी भी हमसे रोज जुड़ रहे हैं और वो भी हमें अपनी पसंद लिखकर भेज सकें, इसके लिए उन्हें ज़रूरत होगी हमारे पते की। तो जब तक आप कागज़ और कलम ढूंढ कर लाते हैं, आइए अपने इन साथियों की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा। सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, कृत वर्मा। तो आइए इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सागर का ये गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: चलो ख्वाबों को हकीकत बनाएं, सिर्फ अपनों की नहीं गैरों की भी दुनिया महकाएं। मुस्कुराहट बांटें, खुशियां बांटें और बांटें हम सुख दुख सारे, घर आंगन के फोन इन के सहारे। घर आंगन में मन की बातें बतियाएं, मनपसंद गीतों का आनंद पाएं। इसके लिए हमें फ़ोन लगाएं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच। हमारे नंबर हैं 231-917 और 231-918, कोड है 07774 और कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुनें।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें आपके साथ मैं हूं स्वाति। इस गीत के पहले हमने आपसे कहा था कि कागज और कलम लेकर तैयार रहिए, तो श्रोताओं लिखिए हमारा पता। किस पर लिखेंगे? पोस्ट कार्ड पर। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27। हमारा पिन कोड है 497001। तो जल्दी से अपनी पसंद हमें लिख भेजिए और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इन श्रोताओं की फरमाइश पर। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्लाह अकरम, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम, आदिबा, लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, बुलंदशहर से बद्रुवली अंसारी, फर्जुवली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, सरगुजा मैनपाट से हमारे श्रोता हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। तो आइए अपने इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर हम सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का ये गीत। गीत लिखा है आनंद।

मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। इसी गीत की फरमाइश इन श्रोताओं की भी है, भाटापारा से बच कामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा। सिद्ध बाबा भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा, शिवम वैष्णव। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या। तो आइए अपने इन श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म रहना है तेरे दिल में का ये गीत। स्वर है बॉम्बे जयश्री का।

फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। शब्दों में घुली मिठास और सुरों की खुशबू से महकती ये दोपहर आपकी पसंद से सजी है, तो सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। जानते हैं अगली फरमाइश हमारे किन श्रोताओं की है। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर, सरिता गम्हाड़कर, प्रिंस एकांश, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाड़कर, श्वेता सुमित गम्हाड़कर, ध्वनि गम्हाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाड़कर, प्रणिता गम्हाड़कर, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदी नाज, साथ ही साथ सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर।

आपकी पसंद में अगली फरमाइश हमारे इन साथियों की है। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा, लवी श्रीवास्तव। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मीका बिरक। गाजियाबाद लोनी से रजा अहमद, इसरत जहां, आरिश हुसैन, आयत जहां। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला गायत्री। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, राजेश और शीतल राजेश। तो आइए इन श्रोता साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सलामे इश्क का ये गीत। आवाज है कैलाश खेर की, शब्द रचना है समीर का और संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का।

इस अंतिम गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 31 मई तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान आम उत्पादन की नई तकनीकों, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने

0: इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आज से जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में शुरू हो गई है। कल 29 मई तक चलने वाले इस ट्रायल प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं में 23 से 25 जून तक प्रवेश लेना होगा। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कल 29 मई से राज्य के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रूप नारायण सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके निवास पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा गौण खनिज निधि का हिस्सा। प्रदेश में लागू होगी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम। और मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के विभिन्न स्थानों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं, अब इसे और गहराई से समझते हैं।

0: रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
1: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
0: जी,
1: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
0: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
0: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
0: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
1: जी,
0: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।

0: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
1: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
0: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
6: माँ, माँ,
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का? तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
7: हाँ माँ।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा, जरूर।

0: ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
1: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा। अच्छा। रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
3: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
3: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
3: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
3: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
4: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
5: जी साहब, जी साहब।
4: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
5: चलो साथियों।
3: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परम

0: वीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए एक ही शीर्षक पर आधारित गीतों का कार्यक्रम चयन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है एक ही शब्द पर। तो कार्यक्रम चयन सुन रहे सभी श्रोताओं को स्वाति की ओर से नमस्कार। आज चयन कार्यक्रम के लिए हमने जो शब्द चुना है उसे बताकर आपको संगीतमय संसार में ले जाने से पहले कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम चाहेंगे कि उस शब्द को आप पहचानने का प्रयास कीजिए। पहली बार की बात ही कुछ और होती है, अधूरी सी दुनिया भी पूरी लगती है। वही पल जिंदगी की पहचान बन जाते हैं जो पहली बार मन को छू जाते हैं। इन पंक्तियों के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम चयन का ये पहला गीत कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, शब्द रचना है समीर की और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी

इस गीत के साथ आप जरूर समझ गए होंगे कि आज कार्यक्रम चयन में चुना गया शब्द है पहली बार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम आपके उसी पहली बार के एहसास को आपकी स्मृतियों से ढूंढ निकालेंगे, जिसे आपके मन ने किसी कोने में संजो कर रखा है।

पहली बार शीर्षक गीतों की श्रृंखला में। अभी आपने सुना फिल्म धड़क का ये गीत, जिसमें आवाज थी अजय गोगवले की, शब्द रचना थी अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत अजय अतुल का था। श्रोताओं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर पहली बार से ही शुरू होती हैं। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी का सबसे खास एहसास होते हैं। हर काम की शुरुआत पहली बार से ही होती है, जो अपने साथ डर, उत्साह, खुशी, सीख और यादें लेकर आता है। जैसे पहली बार बोलना, पहला कदम, पहला दिन, पहला दोस्त, पहली बारिश, पहली जीत और कभी कभी तो पहली हार भी। यही वो पल होते हैं जो यादों में घर बना लेते हैं। कुछ ऐसी ही भावनाएं व्यक्त करता ये गीत। आइए सुनते हैं फिल्म साजन से।

आप सुन रहे हैं एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। अभी आपने सुना फिल्म साजन का ये गीत, जिसमें आवाजें थीं अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत लिखा था समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का था। श्रोताओं, किसी भी काम का पहली बार होना बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यही वो समय है जिसमें हम स्वयं को तराशते हैं। पहली बार में किसी कार्य में गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि वही हमें बेहतर बनाती है। यदि हम पहली बार से ही डर जाएं, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहली बार सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि हिम्मत और प्रयास की पहचान है। बातें तो और भी हैं, पर आइए शीर्षक गीतों के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम चयन में सुनते हैं फिल्म रेस का ये गीत आतिफ असलम की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत प्रीतम का है।

0: हम पर। उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा।

0: आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
0: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।
2: श्रोताओं, उम्र चाहे जो भी हो, अपने भीतर पहली बार के अनुभव को पाने की ललक कभी खत्म ना होने दें। इन्हीं बातों के साथ आज कार्यक्रम चयन यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर का 1 बजने वाला है हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी।

मंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय है मई जून में कृषि प्रबंधन।
1: किसान मित्रों, मई जून में मुख्य रूप से बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तरोई, करेला, कद्दू, भिंडी, धनिया और मिर्च बैगन की नर्सरी लगाना सबसे लाभदायक होता है। इस मौसम में तेज़ गर्मी के कारण खेत की गहरी जुताई जरूरी है ताकि कीटाणु नष्ट हो जाए। ये फसलें बरसाती सीजन के लिए तैयार होती हैं और बाजार में ऊंचे दाम पर मिलती हैं। बेल वाली सब्जियां लौकी, तुरई, करेला, कद्दू और खीरा ककड़ी, इसके लिए मचान विधि सर्वोत्तम होता है। भिंडी गर्मी की सबसे प्रमुख फसल है जो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है, अतः किसान भाई बहन भिंडी की फसल भी ले सकते हैं। मई में धनिया की बुआई जून जुलाई में अच्छी मांग दिलाती है, इसलिए धनिया की फसल भी किसान भाई बहन ले सकते हैं। जून के लिए नर्सरी में टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूलगोभी की नर्सरी तैयार करें ताकि बारिश शुरू होते ही रोपाई की जा सके। इसी प्रकार अदरक और हल्दी छायादार स्थानों और अन्य फसलों के बीज ले सकते हैं। खेती की तैयारी के लिए रोटावेटर से गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और कीड़े धूप में नष्ट हो जाएं। फसलें केवल बारिश पर निर्भर न रहें, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था का भी ध्यान रखें। जल निकासी का उचित प्रबंध करें ताकि बारिश अधिक होने पर फसल सड़ने ना पाए। इसी प्रकार हाइब्रिड किस्मों का चयन करें। इन महीनों में की गई खेती मानसून की शुरुआत के साथ बंपर पैदावार और मुनाफा देती है। मई और जून के महीने कृषि प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय खरीफ फसलों की तैयारी और ग्रीष्मकालीन फसलों के रखरखाव का होता है। मई जून की तेज धूप में खेतों की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई अवश्य करें। इससे मिट्टी के अंदर छिपे हानिकारक कीड़ों के अंडे और बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जून के पहले पखवाड़े में बासमती और अन्य अवधि वाले धान की नर्सरी भी किसान भाई बहन तैयार कर सकते हैं। सब्जियों में मुख्य रूप से टमाटर, मिर्च और बैंगन का पौध तैयार करने का यह सही और उचित समय है ताकि मानसून आते ही रोपाई की जा सके। अत्यधिक गर्मी के कारण फसलों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ने और सब्जियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई अवश्य करें। मानसून की शुरुआत से पहले खेत की मेड़बंदी करें ताकि खेत का पानी खेत में ही संचित रहे और सूखे समय में काम आवे। इसी प्रकार गर्मियों में पशुओं को लू और भीषण गर्मी से बचाने के लिए उन्हें छायादार, हवादार स्थान पर रखें और ताजा पानी उपलब्ध कराएं।

0: पशुपालक और किसान भाई बहनों के लिए कुछ अनुशंसित फसलें जैसे मक्का व अरहर मई के अंत से जून के मध्य तक बुआई पूरी कर लेनी चाहिए। सब्जियों में भिंडी, लौकी, तुरई और करेला जैसी सब्जियों की बुआई लाभदायक रहती है। इसी प्रकार मूंग, उड़द और अरहर की खरीफ बुआई जून महीने में की जा सकती है। मई और जून का महीना धान की नर्सरी तैयार करने और बरसाती सब्जियों की बुआई के लिए भी सबसे उत्तम समय है। धान की अच्छी पैदावार के लिए नर्सरी का सही समय और बीजोपचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। धान की नर्सरी डालने के लिए 15 मई से 20 जून तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। मई के दूसरे सप्ताह से जून के अंत तक बासमती किस्मों में जून का पहला सप्ताह सबसे उपयुक्त माना जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय था मई जून में कृषि प्रबंधन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार बहनों, आप सभी का स्वागत है घर आंगन कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी रितु सिंह। बहनों, गर्मी का ये मौसम अपने साथ फलों के राजा आम की बहार लेकर आता है, लेकिन वहीं तेज गर्मी व धूप के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी साथ आती हैं। और स्वास्थ्य के लिए गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वच्छ पानी की उपलब्धता और लू से बचाव। मैंने देखिए, हमारे घर की खुशहाली परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य से ही जुड़ी होती है, और परिवार का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना साफ पानी पीते हैं। गंदा पानी कई बीमारियों का कारण बनता है बहनों, इसलिए पानी हमेशा ढककर रखें, उबाल कर फिर उसे ठंडा कर लें और फिर पिएं, फिल्टर करके पिएं, और पानी रखने वाले बर्तनों की भी नियमित सफाई करें। और यही छोटी छोटी बातें जो हैं, ये जो सावधानियां हैं, यही पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं। बहनों, आज बढ़ती गर्मी और घटते जल स्तर से भी हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यह सारी बातें हमें यह याद दिलाती हैं कि पानी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, नल को व्यर्थ में खुला न छोड़ें, बेकार पानी न बहाएं और घर के आसपास साफ सफाई रखें। बहनों, जब भी हम पानी बचाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन को बचाते हैं, इसलिए पानी का उपयोग तो करें पर उसका दुरुपयोग ना करें। हमेशा ही इस बात को ज़रूर याद रखें। बहनों, गर्मी के दिनों में चलने वाली गर्म हवाएं यानी लू भी बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इससे बचने के लिए दोपहर की तेज़ धूप में बाहर निकलने से हमें बचना चाहिए। सिर को सूती कपड़े या छाते से ढक लें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। खूब सारा पानी पीना गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा है। छाछ, नींबू पानी और आम पन्ना जैसे घरेलू पेय को अपनाएं। बेल का शरबत, सौंफ व धनिया का शरबत, ये सभी चीज़ें भी गर्मी से राहत देती हैं और हमारे शरीर को अंदर से गर्मी को सहने की शक्ति भी देती हैं। बहनों, इस मौसम में छोटे बच्चे व बुज़ुर्गों का भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा हो, इस मौसम में तेज़ बुखार हो जाए या कमज़ोरी महसूस हो तो उसे ORS का घोल ज़रूर दें, साथ ही डॉक्टर से भी संपर्क ज़रूर कर लें। बहनों, थोड़ी सी जागरूकता हम सभी के स्वास्थ्य को, हमारे आसपास के पर्यावरण को अच्छा बनाकर रख सकती हैं। तो बस आवश्यक है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और अपना जीवन बहुत ही संतुलित बनाएं, स्वस्थ बनाएं। तो बहनों, आपकी हमारी इस बातचीत के बाद अब कार्यक्रम में समय हो चला है कि हम एक गीत सुन लें। तो आइए

0: बेनो, अभी आपने सुना फिल्म रोग का ये गीत MM करीम की आवाज़ में, और अब कार्यक्रम में समय है एक ज़रूरी संदेश का, आइए सुनते हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और बहनों, इस जरूरी संदेश के बाद अब कार्यक्रम में समय है गुलदस्ता क्रम का। आज गुलदस्ता क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं महिला मंच, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी रेडियो सखी अनीता मंदलवार। इन्होंने बातचीत की है महिला बाल विकास द्वारा संचालित योजनाओं पर, तो आइए सुनते हैं आज गुलदस्ता क्रम में ये महिला मंच।

0: आज हम उपस्थित हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर बातचीत के लिए। और आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित उन योजनाओं की जो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नारी शक्ति और बच्चों के उज्जवल भविष्य को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे उन योजनाओं के बारे में जो समाज के विकास की मजबूत नींव तैयार कर रही है। तो आइए ऐसे ही हमारी इस विभाग में कार्यरत जो बहनें हैं उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ एक यहाँ जो कार्यरत हैं वो उपस्थित हैं, वो अपने बारे में सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और आप यहाँ किस पद पे काम कर रही हैं।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं नैन्सी राज, पर्यवेक्षक अंबिकापुर शहरी से बोल रही हूँ। सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि मैडम ने बताया कि हमारे विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुख्यतः महिलाओं और बच्चों से संबंधित हैं। उनमें से एक मुख्य योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। सामूहिक कन्या विवाह योजना मुख्यतः गरीब परिवारों, विशेषकर कन्याओं, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित एक बेहद ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल है। ये मुख्य रूप से दहेज मुक्त सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अभी वर्तमान में एक जोड़े के पीछे सरकार द्वारा 50,000 रुपये की राशि दी जाती है।

0: हूँ, जिसमें से 35,000 रुपये की राशि एकमुश्त हमारे जो भी जोड़े हैं, नवविवाहित जोड़े, उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाती है, और उसमें से 8,000 जो हमारी राशि है वो विवाह सामग्री के लिए और 7,000 की जो राशि है वो आयोजन के लिए खर्च की जाती है। इस प्रकार टोटल कुल 50,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा इसमें दी जा रही है। अब सामूहिक कन्या विवाह, चूँकि इसकी जो पात्रताएं हैं इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। इसमें मुख्य रूप से जो आवेदक है वो हमारे छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक, उसी प्रकार दूल्हे की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता, दहेज प्रथा पर रोक और फिजूल खर्ची को कम करना है और बाल विवाह को रोकना है। ये हमारे विभाग की अति महत्वपूर्ण योजना है जो सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
1: जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। और देखिए, हमारे समाज में आज भी कन्या विवाह को बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, है ना? तो इस ओर इस ये विभाग जो कर्तव्य अपना निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छी पहल है ये, और शासन की भी बहुत अच्छी पहल है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और बहनों देखिए, और हमारे साथ एक और सुपरवाइजर बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ।
2: जी, मेरा नाम एकता सिंह है, मैं यहाँ अंबिकापुर में पदस्थ हूँ। मैं आप लोगों को महतारी वंदन योजना के बारे में जानकारी देना चाहती। हमारे शासन द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई बहुत ही प्रमुख आर्थिक सहायता योजना है। इसके द्वारा विवाहित महिलाओं को 1,000 की राशि प्रत्येक माह दी जाती है, जो कि एक साल में 12,000 राशि महिलाओं के खाते में जाती है, जिससे हमारी बहुत सी महिलाएं आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। मैं आपको, आप सभी को इसकी पात्रता के बारे में भी बता दूं। इसके तहत महतारी वंदन योजना के तहत महिला छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होना चाहिए, विवाहित महिला की आयु 1 जनवरी 2026 तक 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी इसमें, महिलाएं भी इसकी पात्र होती हैं। और इसके तहत इसमें DBT के माध्यम से 1,000 की राशि उनके खाते में जाती है। इस योजना द्वारा महिलाओं का बहुत समग्र विकास हो रहा है और वह अपने परिवार का जीविकापार्जन अच्छे से कर पा रही।
1: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं को समृद्ध बना रही हैं, कुछ और भी यदि आप बताना चाहें?
2: हमारे ही विभाग द्वारा एक योजना गर्भवती माताओं के लिए चलाई जाती है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार किया जाता है। इसके तहत प्रथम बच्चे के लिए 5,000 की राशि उन्हें एक मुश्त प्रदान की जाती है, और दूसरे संतान होने पर 6,000 की आर्थिक सहायता बैंक खाते से दी जाती है। दूसरी संतान इसमें बालिका ही होनी चाहिए, ये इसका नियम है।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और देखिए, यहाँ पर और एक बहन उपस्थित हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम रोमा सुनपाकर है, मैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हूँ।
1: जी, तो कुछ बताइए, क्या योजनाएं चल रही हैं आजकल?
3: हमारे आंगनबाड़ी में एक महिलाओं के लिए मातृवंदन योजना लागू है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। इसके तहत आंगनबाड़ी महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 और दूसरे संतान बालिका होने पर 6,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। यह योजना

0: पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करती है। इसके लिए आप आंगनबाड़ी दीदी से, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य यह है कि गर्भवती और जो धात्री महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो सके। इसके लिए सहायता राशि पहले बच्चे के लिए 5,000 जो कि 2 किस्तों में, और दूसरे बच्चे के लिए बेटी होने पर 6,000 एक मुफ्त खाते में दिए जाते हैं। इसमें पात्र कौन होंगे? प्रथम बार की गर्भवती महिलाएं जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जन्मी, और दूसरी बालिका के लिए पात्र होंगे। आवेदन आप कहाँ कर सकते हैं? आपके नज़दीकी जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनसे, कार्यकर्ता से आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं
1: जी। और ये बताइए कि देखिए आंगनबाड़ी में बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, है ना? तो वहाँ पे बालिकाओं के लिए या छोटे बच्चों के लिए अभी क्या चल रहा है?
0: हाँ, धात्री माता और गर्भवती माता के लिए पोषण आहार के रूप में रेडी टूट दिया जाता है जो कि बहुत पौष्टिक है, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है
1: जी।
0: और जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए गर्म भोजन दिया जाता है, और प्ले खेल के दौरान उनको सिखाया जाता है जो मूलभूत जानकारियाँ हैं
1: वो दिया जाता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी धन्यवाद।
1: और देखिए यहाँ पर और एक बहन उपस्थित हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं।
2: सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं कुसुमलता जायसवाल अंबिकापुर शहरी परियोजना से आप लोगों को नोनी सुरक्षा योजना के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही थी। ये योजना हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। ये बहुत कल्याणकारी योजना है। इसमें बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के आगे की शिक्षा के लिए ये योजना लागू किया गया है। इसमें इसके तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो पहली बालिका है उसको लाभ दिलाते हैं इसमें। और इसमें आपको कोई पैसा जमा करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से LIC है जो सरकार है नहीं हर साल जमा करती है 5,000 रुपये, और 18 साल तक होने तक वो पैसा मैच्योर हो जाता है। और इसमें बालिका जो है वो 12वीं तक पढ़ाई पूरा कर लेती है, और 18 के बाद शादी उसका यदि होता है तो उस पैसे का लाभ उस परिवार को आसानी से मिल जाता है। ये हमारी योजना का मुख्य विशेषता है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: तो बहनों, आज बहनों से बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी प्राप्त हुई, और जानकारी ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है। पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य का आधार है बहनों। हर घर पोषण, हर मन ज्ञान, यही हमारा सुंदर अभियान। सशक्त नारी, सुरक्षित बचपन, देश बनेगा तब महान। आप सभी ने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां आज प्रदान की हैं हमारी बहनों के लिए, तो आप सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

तो बहनों, गुलदस्ता क्रम में अभी आपने सुना महिला मंच, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी रेडियो सखी श्रीमती अनीता मंदिलवार। और बहनों, इस महिला मंच के बाद कार्यक्रम में समय है गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और बहनों, अब घरेलू नुस्खों के क्रम में है आज पौधों की देखभाल। बहनों, पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो हम सब्जियां रोज काटते हैं, उनके छिलकों को यदि हम पानी में डुबा कर रखें और फिर उस पानी को पौधों में डाल दें तो पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व तो मिल जाते हैं। इसी तरीके से चावल धोने के बाद जो पानी बचता है, इसे भी हम और ज़्यादा पानी मिलाकर थोड़ा और डाइल्यूट कर लें और फिर इसे पौधों में डालें तो इससे भी पौधों की पत्तियों में काफ़ी चमक आ जाती है। और बहनों, पौधों में जब भी पानी देना हो दोपहर के समय न दें, सुबह और शाम के समय दें। इससे मिट्टी ज़्यादा देर तक नम रहती है और पौधे हेल्दी रहते हैं। बहनों, इसी तरह से मिट्टी नम बनी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि हम गर्मी के इन दिनों में मिट्टी के ऊपर या गमलों की जो सतह दिखाई देती है उस पर सूखी पत्तियां या फिर नारियल की बूझ को छीलकर अच्छे से फैला दें। इससे भी मिट्टी काफ़ी देर तक नम बनी रहती है। तो बहनों, इन नुस्खों के बाद कार्यक्रम में समय है एक और गीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं फिल्म जमीन आसमान का लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत।

विश्वविद्यालय में पहले कार्यक्रम का पता है। कार्यक्रम घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 पिन कोड है 497001। मेल एड्रेस है gharanganair@gmail.com। और अब ऋतु सिंह को दीजिए आज के घर आंगन से इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। श्रोताओं, ईमेल की गूंज का आज जो हमारा पहला गीत, जिसकी फरमाइश हमारे इन साथियों की थी, अकोला से सुयश चोपड़ा, अंकिता चोपड़ा, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती, ये साथी हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, राही सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश, अर्जुन गवहाणकर, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग, सुरेश नारंग, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। तो आइए इन श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं ईमेल की गूंज का ये पहला गीत कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है इम्तिहान, शब्द रचना फैज अनवर की है और संगीत अनु मलिक का है।

आज कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आपके साथ मैं हूं स्वाति उपाध्याय। श्रोताओं, जब कोई हमारी पसंद का ख्याल रखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए, इसी बात को सोचते हुए, ईमेल की गूंज में हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये अगला गीत। पसंद करने वाले हमारे साथी हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही, पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, सोपान ताइड़े, नारायण इंगले, आशीष मोहरेकर, नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से, ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ से, गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्रडांगी, किशनगंज बिहार से हमारे श्रोता साथी हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु, प्रिया, कीर्ति भारती, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत। आवाज है किशोर कुमार की, शब्द रचना राजेंद्र किशन की है और इसे संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने।

अगली फरमाइश इन श्रोता साथियों की है। पदुम नगर चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जीशान शाहनवाज और सिद्दीकी परिवार के सभी सदस्य। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा। बुड़ाना से शेख मूसा भाई, भाई राजकुमार। इसी गीत की फरमाइश कीर्ति नगर नई दिल्ली से है मानसी, अनिल, गौरव, कविता अरोरा। मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। दतरेंगी भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। पेंटर विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया और ईशु बाबा। इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा। मिठ्ठूमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। तो आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं ये अगला गीत।

फिल्म टू स्टेट्स के इस गीत को आपने अभी सुना अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज में। इनकी आवाजों के इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज स्वाति के साथ।

आइए अब बढ़ते हैं अगली पसंद की ओर। अगली पसंद हमारे इन श्रोताओं की है, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से। तेलंगाना निज़ामाबाद से हमारे श्रोता हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। प्रेषक सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से बलराम सेन, इंदु सेन। लालबाग जगदलपुर बस्तर से हमारे श्रोता हैं प्रेम मनी नाग, पूनम रानी सरकार, सीमा ठाकुर। साथ ही इसी गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं राजकोट से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कंचन कुसुम, कलावती जूली और जगदीश जौहरी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया देशानी और निमित आहूजा। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकार, सुजाता पोहरकार। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। तो आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म वीर जारा का ये गीत उदित नारायण की आवाज में। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत मदन मोहन कोहली का था। आप सुन रहे हैं ईमेल की गूंज कार्यक्रम स्वाति के साथ। अब बढ़ते हैं अगली पसंद की ओर और जानते हैं किन श्रोता साथियों ने अगले गीत की फरमाइश की है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, विशाल सपकाल, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रदेश संघई, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहान, ग्राम पड़ौली पोस्ट धौरपुर विकासखंड लुंड्रा जिला सरगुजा से प्रथम प्रफुल्ल खंडा, कैरव खंडा, गर्वी खंडा, अनुज खंडा, सुनैना दास और वेद कुमार, शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, बलौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, बघेरा दुर्ग से हैं हमारे श्रोता साथी संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और इनके परिवार के सदस्य, सरोज चौक अमरावती से कमरूला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म जन्नत का ये गीत केके की आवाज में। शब्द रचना सईद कादरी की है और संगीत निर्देशन प्रीतम का है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम के आज के अंक से स्वाति को दीजिए इजाजत। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आज का आपको कैसा लगा, अपने पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने

0: आया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
1: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
3: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर

0: बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्य

0: मंत्री डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार अभी हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम गीत गंधा में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल के बाद अब बढ़ते हैं हम कार्यक्रम गीत गंधा की अगले गीत की ओर। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने, शब्द रचना है फैज अनवर की और संगीत निखिल विनय का है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कुछ है कि जो घर दे नहीं पाता है किसी को, वरना कोई ऐसे तो सफर में नहीं रहता। गीत गंधा की अगली जो हमारी गीतों की कड़ी है, उसमें हम बढ़ते हैं और सुनते हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत।

कार्यक्रम गीत गंधा में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत। शब्द रचना ललित सेन की है और संगीत भी ललित सेन का है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गंधा। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अंतिम गजल। आवाज है गुलाम अली की, शब्द रचना मीर तकी मीर की है।

बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। सभा के आरंभ में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 पर कार्यक्रम भजन संध्या के अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे गैर फिल्मी गीतों और फिल्मी भजनों का। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण किया जाएगा। 6:05 पर विचार बिंदु का पुनः प्रसारण होगा। विषय है आत्म स्वीकृति, संकलन और वाचन स्वर धरती का है। 6:20 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली को आप सुन सकेंगे, जिसमें आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया लोकगीत। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम माधुरी का आप आनंद ले सकेंगे और सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का समय रहेगा 7:05। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:20 पर और किसानवाणी आप सुन सकेंगे शाम 7:30 पर। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे। साथ ही एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का आप आनंद उठाएंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर यामिनी के अंतर्गत आप सुन सकेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन और रात्रि 10:30 पर श्रोताओं के खतों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम मनभावन में। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: ಶಿವನೇ ಗಜಿರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र, साथियों हाथी

0: यहूदियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो, उदर बसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, लक्ष्मणगढ़, सायर, मानपुर, लंगड़ासाण, ललितपुर, सरगा, पेटला, भरतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूरचुंदी, बरटोली, खड़ामाचा, चट्टानपारा, महुआडीह, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 93 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 48 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजहर, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम भजन संध्या में लीजिए सुनिए अदनान सामी की आवाज में ये कवाली।

फिल्म है बजरंगी भाईजान। ये पारंपरिक रचना है, गीत कौसर मुनीर ने लिखे हैं, संगीत प्रीतम का है।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म बैजू बावरा का ये भक्ति गीत। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत नौशाद अली का है।

कार्यक्रम भजन संध्या में लीजिए अब सुनिए ए आर रहमान और कादर गुलाम के स्वर में ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म फिजा से। गीतकार हैं शौकत अली और संगीत ए आर रहमान का है।

ओम व्यास के गाइस भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम भजन संध्या अब यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

बस अपने हुनर पर थोड़ा विश्वास रखो। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान मनोरंजन और जानकारियों से भरा आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी दोस्त चंचला यादव। स्टार्टअप या नौकरी, क्या है आज के युवा की पहली पसंद? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मसालेदार चटपटी और दिल से जुड़ी बातचीत। दोस्तों, आज का युवा सिर्फ जॉब चाहिए वाली सोच तक सीमित नहीं है, अब युवा सोचता है खुद का कुछ बड़ा करना है। पहले लोग पूछते थे बेटा नौकरी लगी, अब लोग पूछते हैं स्टार्टअप शुरू किया। और सच कहूँ तो आज सोशल मीडिया ने युवाओं के सपने को नया पंख दे दिया है। कोई घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है, कोई रील बनाकर लाखों कमा रहा है, तो कोई अपने छोटे से आइडिया को बड़ा ब्रांड बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नौकरी का अपना अलग ही सुकून है। हर महीने फिक्स सैलरी, घर वालों के लिए टेंशन कम, और बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करती है वाला पड़ोसियों का सम्मान, वो तो अलग ही लेवल का होता है। अब अगर बात करें स्टार्टअप की, तो इसमें रिस्क भी है और रोमांच भी। यहाँ छुट्टी कम और टेंशन ज़्यादा होती है। इंटरनेट गया तो बिजनेस गया, कभी ग्राहक नाराज तो पूरा मूड खराब। लेकिन अगर मेहनत रंग ला जाए तो वही छोटा सा स्टार्टअप लोगों की प्रेरणा बन जाता है। आज का युवा अब सिर्फ पैसा नहीं, पैशन भी ढूंढ रहा है। वो ऐसा काम चाहता है जिसमें खुशी हो, पहचान हो और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लिए स्टार्टअप सही नहीं होता और हर किसी के लिए नौकरी भी गलत नहीं होती। अगर आपके पास धैर्य है, रिस्क लेने की हिम्मत है, नई सोच है और गिरकर संभलने का जज्बा है, तो स्टार्टअप आपका रास्ता हो सकता है। लेकिन अगर आपको स्थिरता पसंद है, सुरक्षित भविष्य चाहिए और जिम्मेदारियों को संभालते हुए आगे बढ़ना है, तो नौकरी भी शानदार विकल्प है। असल बात तो ये है दोस्तों, सफल वही है जो अपने काम में खुश है, क्योंकि ज़िंदगी दूसरों की तालियों से नहीं, अपने मन की खुशी से चलती है। और आज का युवा समझ चुका है कि भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है अपनी अलग पहचान बनाना। तो चाहे आप नौकरी करें या स्टार्टअप, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज के दौर में डिग्री नहीं, स्किल सबसे बड़ा हथियार है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए सुनते हैं फिल्म दिल से का प्यारा सा गीत सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ों में।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने

0: वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे अगले क्रम महफिल की ओर।

शाम हो, बात हो और साथ में कुछ खूबसूरत अल्फाज, बस यही तो है हमारी महफिल की पहचान। तो चलिए अब दिल की बातें करते हैं गज़लों और शायरी के साथ, और याद करते हैं अपने उन श्रोताओं को जो हर रोज इस महफिल को अपना प्यार भेजते हैं। स्वागत है आप सभी का अल्फाजों से सजी क्रम महफिल में। कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं करते, कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं करते, बस खामोशी में भी साथ चलते हैं, और जब बिछड़ते हैं तो आंखें ही नहीं पूरा दिल नम हो जाता है।

इन एहसासों को अपनी आवाज़ दी है कविता पोर्टवाल ने। क्या बात है दोस्तों, कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक उतर जाती है, और यही तो है गज़लों की खूबसूरती। अब जिक्र करते हैं उन दोस्तों का जो इस महफिल की असली रौनक हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर राही, श्रीमती सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता ग्वाड़कर, सिद्धांत अर्जुन ग्वाड़कर टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश ग्वाड़कर एकांत, सुमित कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर परी। आप सभी इस महफिल में इसी तरह अपना प्यार और संदेश भेजते रहिए। दोस्तों, आप सुनते हैं अशोक खोसला की आवाज़ में ये शानदार गज़ल। अजनबी शहर के अजनबी रास्तों पर, अजनबी शहर के अजनबी रास्तों पर दिल भी कितना तन्हा सफ़र करता है। कोई मिलता तो है मुस्कुराकर, मगर कौन अपना है ये वक्त बता देता है।

इस गजल की फरमाइश भेजी है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे ने। दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने। ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े ने। दोस्तों, अब पेश है मोहब्बत के एहसासों से भरी ये प्यारी गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में। इश्क की महफिल में, इश्क की महफिल में हर दिल की अपनी कहानी होती है। कोई मुस्कुराकर छुपा लेता है दर्द, तो किसी की आंखों में रवानी होती है।

और इस प्यारी सी गजल का पैगाम दोस्तों हमें लिख भेजा है सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव रुस्तम हिमांशु अनुष्का ऐश्वर्या प्रीतम मनोज यादव ने। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा घुड़नी करिश्मा सोमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम पैकरा हीरामणि ऐश्वर्या पैकरा ने। दोस्तों हमारी आज की महफिल यहीं सजकर अब इजाज़त चाहती है। उम्मीद है आज की गज़लों और शायरियों ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। अगर आप भी किसी अपने के नाम संदेश भेजना या अपनी पसंद की गज़ल सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए। पत्र भेजने का हमारा पता है क्रम महफिल युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर पोस्ट बॉक्स नंबर 27 पिन कोड 49701। हमारी ईमेल आईडी है mahfilair@gmail.com। इसी के साथ आज का क्रम महफिल बस यहीं तक। तो दोस्तों इजाजत दीजिए आज की युववाणी से अपनी दोस्त चंचला को। फिर मुलाकात होगी इन्हीं एहसासों के साथ। बस ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करे।

0: भी चिंता करें।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। लीजिए सुनिए आत्म स्वीकृति विषय पर धरती प्रिय प्रजापति का आलेख।

आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है। कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, कोई सुंदर दिखने की चाह में खुद को बदल रहा है, तो कोई दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। इस भागदौड़ में इंसान सबसे अधिक जिस चीज को खो देता है वह है स्वयं को स्वीकार करना, आत्मस्वीकृति, अर्थात अपने व्यक्तित्व, अपनी कमियों, अपनी खूबियों और अपनी वास्तविकता को पूरे मन से स्वीकार करना। यही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं, किसी की सुंदरता देखकर अपने चेहरे से असंतुष्ट हो जाते हैं और किसी की खुशियों को देखकर अपनी ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर इंसान अपने संघर्षों, अनुभवों और परिस्थितियों से बना होता है, इसलिए खुद को दूसरे के तराजू पर तौलना केवल दुख और हीन भावना को जन्म देता है। आत्मस्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास ही छोड़ दें। इसका वास्तविक अर्थ है स्वयं से नफरत किए बिना खुद को बेहतर बनाना। जब इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है

0: तभी वह उनसे सीख पाता है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाता, वह हमेशा दूसरों की स्वीकृति खोजता रहता है। उसकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म स्वीकृति सीख लेता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास बन जाता है। जीवन में असफलताएं हर किसी के हिस्से में आती हैं। कई बार लोग हमें अस्वीकार करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते। ऐसे समय में यदि इंसान खुद का साथ छोड़ दे तो वह भीतर से टूट जाता है। लेकिन आत्म स्वीकृति हमें यह सिखाती है कि मैं जैसा हूँ वैसा भी मूल्यवान हूँ। यही सोच मनुष्य को मानसिक शांति और संतुलन देती है। महान कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं को पहचानने का होता है। जब इंसान अपने भीतर के डर, दुख और कमियों को स्वीकार कर लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनता है। आत्म स्वीकृति हमें नकली दिखावे से दूर ले जाकर वास्तविक जीवन जीना सिखाती है। आज सोशल मीडिया के समय में लोग अपनी जिंदगी का केवल चमकदार हिस्सा देखते हैं। इसे देखकर कई युवा स्वयं को दूसरों से कम समझने लगते हैं। वे अपने रंग, रूप, जीवन शैली या सफलता को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे समय में आत्म स्वीकृति एक दीपक की तरह काम करती है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी पहचान केवल बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और इंसानियत से बनती है। आत्म स्वीकृति का सबसे सुंदर प्रभाव यह होता है कि इंसान धीरे धीरे स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है। जब हम खुद को अपनाते हैं, तब हम दूसरों को भी अधिक सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। मन में ईर्ष्या कम होती है और संतोष बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से हारता नहीं, बल्कि हर कठिनाई से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हमें यह समझना होगा कि पूर्णता केवल एक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां और कुछ विशेषताएं होती हैं। इसलिए स्वयं को बदलने से पहले स्वयं को अपनाना आवश्यक है। आत्म स्वीकृति ही आत्मविश्वास की नींव है और आत्मविश्वास ही सफलता का पहला कदम है। अंततः आत्म स्वीकृति केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब इंसान स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब वह दुनिया की आलोचनाओं से डरना छोड़ देता है। वह अपने सपनों की ओर साहस के साथ बढ़ता है और भीतर से सच्ची खुशी महसूस करता है।
1: अभी आप आत्म स्वीकृति विषय पर आलेख सुन रहे थे। शीर्षक था आत्म स्वीकृति। आलेख संकलन और वाचन धरती प्रिया प्रजापति का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी की जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायत में मिली गौण खनिज निधि के हिस्सा। प्रदेश में लागू हो ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य अन्य जगह में मनाए जावा थे। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ सरकार है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ला मजबूत करे बर जिला पंचायत मला घलो गौण खनिज निधि में हिस्सा दे के आदेश जारी कर दे है। खनिज साधन विभाग के मुताबिक गौण खनिज मल्ले मिलैया राशि के वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच तय अनुपात में करे जाही। ये निधि के उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसन विकास काम में करे जा सकही। मुख्यमंत्री उसने सहायक कही ने कि यह फैसला ले पंचायत मल्ला आर्थिक मजबूती मिली और ग्रामीण विकास काम में तेजी आई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कही ने कि भारत के किसान मन के मेहनत के सेती देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान पर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह ला संबोधित करत श्री चौहान बताइने कि ये बचत देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन ले ज़्यादा है, जौन पाछू बच्छर की तुलना में 5.3% ज़्यादा है। श्री चौहान कहने कि 2 दिन के ये सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण पर एक रोड मैप तैयार करे में सहायक।

0: होही। ये सम्मेलन के उद्देश्य अवैया खरीफ ऋतु बर रणनीति में विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्दी इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू करे जाही। ए बारे में काली रायपुर में खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले के अगुवाई में राज्य स्तरीय कार्यशाला राखे गिस। बैठक में श्रीमती कंगाले है कहीने कि केंद्र सरकार अवैया खरीफ बछर में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम ला प्राथमिकता के संग लागू करे के दिशा में काम करत है। एखर बर राज्य के राइस मिल मन ला तकनीकी रूप ले अपग्रेड करना जरूरी होही। ओमन आश्वस्त करीन है कि मिलर्स डाले दे गए सुझाव और समस्या के परीक्षण करके जरूरी प्रस्ताव केंद्र सरकार ला भेजे जाही। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा अपन भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी के परिचालन उत्पादन वित्तीय स्थिति और विकास योजना मन के समीक्षा करें। ए दौरान उमन संयंत्र प्रबंधन लक्ष्य निर्धारित करे सुरक्षा मानक ला मजबूत करे और उत्पादन में सुधार ऊपर विशेष ध्यान दे के निर्देश दें। पत्रकार मन ले गोट बात करत श्री पंडा कहिने कि राव घाट परियोजना छत्तीसगढ़ सेल और पूरा देश भर महत्वपूर्ण हवे। राव घाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद हवे। एखर ले देश ला लौह अयस्क मिली और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारी क्षमता ला घलो मजबूती मिली। श्री पंडा सेल के भविष्य के योजना मन के बारे में बताइने कि कंपनी है अवैया 4-5 बछर में अपन उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन ले बढ़ा के 35 मिलियन टन हर बछर करे के लक्ष्य राखे है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत अवैया कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी है देश भर के अपन 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज मन में बीमित श्रमिक मन के लयिका मन बर 700 सीट आरक्षित करे है। एखर बर ऑनलाइन आवेदन करे के आखिरी तारीख 31 मई ले बढ़ा के 21 जून कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के मुताबिक ये आरक्षित सीट में योग्य उम्मीदवार के चयन नीट यूजी परीक्षा के माध्यम ले करे जाही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है विद्यार्थी मन ला आश्वस्त करे है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE डहर ले शुरू करेगी नवा ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले एक प्रगतिशील साधन आए। श्री प्रधान नई दिल्ली में CBSE अधिकारी मन के संग बैठक के बाद ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं के परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगति और तकनीकी खराबी ला लेके श्री प्रधान ने स्वीकार करी है कि कुछ एक मुद्दा आगू आ है। ओमन विद्यार्थी मन ला आश्वासन दे है कि पुनर्मूल्यांकन के दौरान जम्मो शिकायत मन के समाधान करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाँचे समाचार कोती। ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने भाग में मनाया जावत है। त्याग और बलिदान के ये त्यौहार ला मुस्लिम समुदाय के लोगन मन हा ईदगाह और मस्जिद मन में विशेष नमाज अदा करी। ईद उल जुहा हजरत इब्राहिम डहर ले खुदा के आदेश के पालन करत अपन इकलौता बेटा के कुर्बानी दे के सुरतामा मनाए जाते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ईद उल जुहा में देशवासी मला बधाई दीन है। आज महान क्रांतिकारी और चिंतक वीर दामोदर सावरकर के जयंती हवे। ये मौका में मुख्यमंत्री सुदेव साह और मला श्रद्धांजलि अर्पित करी। श्री साह कहने कि भारत के स्वाधीनता पर अपन जिंदगी समर्पित करैया वीर सावरकर के अदम्य साहस त्याग राष्ट्रनिष्ठा और अटूट संकल्प के अमर कहानी हवे। विपरीत परिस्थिति में घलो राष्ट्रहित के प्रति उखर अटूट प्रतिबद्धता अवैया पीढ़ी ला निरंतर प्रेरित करत रही। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल है बरसा ले पहली जम्मू सड़क के मरम्मत कर ओला गड्ढा मुक्त करे के निर्देश दिन है। रायपुर परिक्षेत्र के दोनों मंडल के स्वीकृत निर्माणधीन और निविदा प्रक्रिया के प्रगति के समीक्षा के दौरान श्री बंसल अधिकारी मल्ले कहीं ने कि स्वीकृत काम के प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून तक भेजे जाही। ओमन निर्माण काम के गुणवत्ता के

0: संगे संग समय सीमा में पूरा कर लेला कहीं। संगे संग अनुविभागीय अधिकारी मन लेके प्रमुख अभियंता तक जम्मू अधिकारी मन हर मंगलवार मुख्यालय में रहे के घलो आदेश दिन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ह संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 के संशोधित तारीख और प्रवेश पत्र जारी कर दे है। एनटीए के मुताबिक परीक्षा 31 मई 6 और 7 जून के रखी जाही। ईद उल जुहा के से 3 तारीख में बदलाव करे गए है। एनटीए ह बताइन है कि 31 मई के परीक्षा देवई या उम्मीदवार मन के प्रवेश पत्र जारी कर दे गए है। 6 और 7 जून के परीक्षा बार प्रवेश पत्र जल्दी से जारी करे जाही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में काली 29 मई ले राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। 3 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ राज्यपाल रमेन डे कहा करही। उन्हें समारोह के पगरैती मुख्यमंत्री विष्णु देसाय करही। ये मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल माई पहुना के रूप में मौजूद रही। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डहर ले आयोजित ये महोत्सव में आम के आने आने किस्म के प्रदर्शन लगाए जाही। 31 मई तक चलेगा ये महोत्सव के दौरान आम उत्पादन के नवा तकनीक प्रसंस्करण और विपणन संबंधी विषय ऊपर विशेषज्ञ डहर ले मार्गदर्शन दे जाही। प्रदर्शनी हरेक दिन मंझनिया 12 बजे ले रतिया 9 बजे तक आम लोगन मन पर खुले रही। अब थोड़ी समाचार मौसम के। प्रदेश के मौसम में काली ले बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार बताई है कि ये बेरा एक ठीक चक्रवाती घेरा झारखंड में बने हैं। उन्हें एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश ले आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। एक असर ले प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। काली उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में हवा गरेर और गरज चमक के संग वर्षा होने की संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में करा गिर सकते है। काली ले अवैया 4 दिन तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 ले 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभावित। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। छत्तीसगढ़ में अब जिला पंचायत मल्ला मिली गौण खनिज निधि के हिस्सा। प्रदेश में लागू हो ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम और ईद उल जुहा आज छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य अन्य जगह में मनाए जावा थे। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावा थे। जय जोहार।
1: अभी आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का
2: प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम गोधूली में सरगुजिया लोकगीत सुनिए। मोहर दास और साथियों से ये सेवा गीत सुनिए।

अभी आप सदा वृक्ष और साथियों से ये खेमटा गीत सरगुजिया में सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गोधूली अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम माधुरी में लीजिए सुनिए फिल्म कुर्बानी का गीत अनवर हुसैन और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं फारूक कौसर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। लीजिए अब सुनिए शान और शांतनु मोइत्रा की आवाज़ों में फिल्म थ्री इडियट्स का गीत। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीत शांतनु मोइत्रा का है।

कार्यक्रम माधुरी के आखिर में लीजिए सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा सिंह की आवाजों में फिल्म द जेंटलमैन का गीत। गीतकार हैं इंदेवर और संगीत एआर रहमान का है।

0: इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार

0: आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज की मुख्य समाचार। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा देने का आदेश जारी कर दिया है। खनिज साधन विभाग के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाली राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में किया जाएगा। इस निधि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम और सड़क जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस फैसले से पंचायतों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इम्प्रूव्ड राइस स्कीम लागू की जाएगी। इस संबंध में कल रायपुर में खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में श्रीमती कंगाली ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी खरीफ वर्ष में इम्प्रूव्ड राइस स्कीम को प्राथमिकता के साथ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य के राइस मिलों को तकनीकी रूप से अपग्रेड करना आवश्यक होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मिलर्स द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. अशोक कुमार पंडा ने अपने भिलाई प्रवास के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र BSP के परिचालन, उत्पादन, वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संयंत्र प्रबंधन को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और उत्पादकता में निरंतर सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पंडा ने कहा कि रावघाट परियोजना छत्तीसगढ़, सेल और पूरे देश

0: के लिए महत्वपूर्ण है। रावघाट में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार मौजूद है, इससे देश को लौह अयस्क मिलेगा और भिलाई इस्पात संयंत्र की विस्तारित क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।
1: छत्तीसगढ़ के लिए, सेल के लिए और कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद है रावघाट, क्योंकि उसमें काफी रिजर्व्स हैं एंड वो रिजर्व्स को माइनिंग करते हुए कंट्री में अवेलेबल होगा आयरन ओर एज वेल एज भिलाई स्टील प्लांट का जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आएगा उसमें भी इसका योगदान रहेगा, इसलिए सेल का मैनेजमेंट का सारे फोकस इसके ऊपर है। ये रॉ मेटेरियल सिक्योरिटी होगा जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी आ रहा है भिलाई में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
0: श्री पंडा ने सेल की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया कि कंपनी ने अगले 4 से 5 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा है।
1: सेल ने अच्छा एफर्ट्स लिया है, डिफरेंट प्लांट्स में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है एंड कहीं कहीं पर आगे बढ़ गया है, बाकी जगह में ऑलरेडी अप्रूवल हो चुकी है, तो उसी हिसाब से हम लोग 20 मिलियन टन से 35 मिलियन टन में चले जाएंगे 4-5 साल में, ये हम लोगों का लक्ष्य है।
0: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने देशभर के अपने 20 प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में बीमित श्रमिकों के बच्चों के लिए 700 सीटें आरक्षित की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई से बढ़ाकर 21 जून कर दी है। छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के अनुसार इन आरक्षित सीटों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन NEET UG परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। आज महान क्रांतिकारी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री साय ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले वीर सावरकर का जीवन अदम्य साहस, त्याग, राष्ट्रनिष्ठा और अट संकल्प की अमरगाथा है। विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित के प्रति उनकी अट प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। महासमुंद जिले में हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए के LPG घोटाला मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ठाकुर पेट्रोकेमिकल अभनपुर के संतोष सिंह ठाकुर और सार्थक सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक खाद्य अधिकारी अजय यादव और मनीष चौधरी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जिले के बमनी धान उपार्जन केंद्र में हुए धान घोटाला मामले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन केंद्र प्रभारी गंगाधर जगत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 1.16 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के धान गबन का आरोप है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे, वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी हर दिन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉ. गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस समय एक चक्रवाती घेरा झारखंड में बना हुआ है, वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से तटीय आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव होने के आसार हैं।
2: मेघगर्जन का गतिविधि जो है वो कल से प्रदेश में आगामी 2-3 दिन तक रहने की चांसेस है। कल उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर इस प्रभाव से तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि और वज्रपात होने के भी चांसेस है, लेकिन कल से लेके

0: आगामी 4 दिन तक पूरा प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट आने की चांसेस है। गिरावट लगभग 2 से लेकर 4 डिग्री होने की संभावना है।
1: इस बीच जगदलपुर में आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान जगदलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में ओले भी गिरे। इधर गरियाबंद जिले में देवभोग थाना क्षेत्र के माहौलकोट गांव में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। और राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI के रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कल 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की जिला पंचायतों को भी दिया जाएगा गौण खनिज निधि में हिस्सा। सेल चेयरमैन ने कहा कि देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है रावघाट परियोजना। ईद उल अजहा आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मनाई जा रही है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम में आएगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे या

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

हमारी आज की सभा में शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 7:20 पर, और शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। रात्रि 8 आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, ईमेल फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी आप सुनेंगे रात्रि 10, इसमें आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन सुनेंगे राग दुर्गा में। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए जानते हैं कल की तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों का विवरण।

कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे जंगल में। सरगुजिया लोकगीत कलाकार होंगे अशोक दास और साथी राजकुमार राजवाड़े और साथी और श्यामलाल उइके और साथी। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुनेंगे सुबह 7:30।

पर। इनसे मिलिए ये साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। ये कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9:00। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय है दिन में 12:00। एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन लेकर आएंगे दिन में 12:30 पर। ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर गोसाई आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर। ईमेल फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि 9:30 पर। गैर फिल्मी गीत और गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा पेश करेंगे दिन में 2:30 पर। हमारी शाम की सभा की शुरुआत हो गई 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी पेश करेंगे 5:30 पर। इसमें आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे 6:05 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली आप सुनेंगे 6:20 पर। इसमें आप सरगुजिया लोकगीत सुनेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुनेंगे 6:30 पर और चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 9:15 पर रात्रि में। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय है 7:20। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

आज की रजनीगंधा कुछ नम आंखों, कुछ भींगी यादों और अल्फाज की उस खुशबू के नाम जिसने बरसों तक हमारे दिलों को रोशन रखा। उर्दू अदब की दुनिया का वो चमकता सितारा, वो नरम लहजे का शायर, वो एहसासों के जादूगर डॉक्टर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे लोग जाते कहाँ हैं। वो अपने अशार में, अपनी गज़लों में, अपने लफ्ज़ों की गर्माहट में हमेशा जिंदा रहते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और आज की ये महफ़िल समर्पित है उस शायर को जिसने मोहब्बत को सादगी दी, तन्हाई को आवाज़ दी, रिश्तों की नमी को अपने कलाम में हमेशा जिंदा रखा।

पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू अदब के सबसे लोकप्रिय और भावुक शायरों में से एक थे। उनका अंदाजे बयां ही अलहदा था। एक दौर था जब दूरदर्शन पर मुशायरे आया करते थे और एक शांत संजीदा चेहरा अपने बेहद आसान लेकिन दिल में उतर जाने वाले अशार से पूरी फिजा को महका देता था। वो शायर थे बशीर बद्र साहब। उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो मुश्किल अल्फाज में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छुपे जज्बातों में बात करते थे। उनके शेर किताबों से निकलकर लोगों की जिंदगी में बस गए, बसों पर लिखे गए, दीवारों पर सज गए और दिलों में हमेशा के लिए ठहर गए। जैसे उनका ये अमर शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या खूबसूरत फलसफा है। जिंदगी की अनिश्चितता को इतनी नरमी से शायद ही किसी ने कहा हो। श्रोताओं, बशीर बद्र साहब की शायरी में मोहब्बत है मगर शोर नहीं, दर्द है मगर शिकायत नहीं और रिश्तों की ऐसी समझ है जो हर उम्र के इंसान को अपनी सी लगती है।

उनकी शायरी में सिर्फ मोहब्बत एक एहसास नहीं थी बल्कि इंसानियत का पैगाम भी थी। देखिए, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। आज जब दुनिया इतनी भागती हुई, इतनी उलझी हुई लगती है, तब बशीर बद्र साहब के ये अल्फाज और भी ज़रूरी हो जाते हैं। कोई शायर सिर्फ लिखते नहीं, वो हमारे भीतर रहने लगते हैं, और डॉक्टर बशीर बद्र साहब भी उन्हीं में से एक थे। उनके जाने का दुख इसलिए भी गहरा है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी यादों का कोई हिस्सा हमसे दूर चला गया हो।

डॉक्टर बशीर बद्र की गज़लें, उनके अशार, उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। और आज रजनीगंधा के इस महफिल में हम उन्हें दिल की गहराइयों से याद कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आपने चंदन दास और जगजीत सिंह की आवाज़ों में गज़ल सुना, और इसी के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम बिनु भैया,
1: राम राम भजन भैया।
0: और चौपाल सुनो या जम्मू किसान भैया बहनी मन ला भी राम राम।
1: और देखी भाई भजन भैया, राउर से देखी नगद दिन में भेंट मुलाकात हर हुई से चौपाल में। तो लगी ये देख कह सुनाई कि ये समय कर गर्मी में राउर हाल हर कैसे है।
0: देखी दिनों दिन यदि गर्मी में तो हलाकान हो जावत है। बाकी ऐसा ना है कि अब यदि अभी समाचार मन में भी सुनत रहें कि भैया बदलाव हो ही। बाकी देखिए अभी नौतपा चलता है, ऐसा में तो भाई घाम हो भी करी और होना भी चाहिए नहीं। जैसे भाई इलाह मन स्वीकार करना पड़ी, भाई प्रकृति का अपन रूप ला बदलत रही तब तो हमार खेती किसानी हर बढ़िया ना होगी।
1: आज देखिए एक बेला कहब नहीं तो चटिक तो भाई ओधे रहीस। बाकी यदि कब फिर ओहर घामा होगीस नहीं समझ नहीं आई। तो मैं तो सोचन कि चटिक आज देही भाई चटिक मटिक, बाकी नहीं तो गिरीस। लेकिन गिरना अभी यदि जरूरी होगी से काबर की हमरे नगद हो गए ही हालाका।
0: बाकी गोइट बात करी देखी योजना मन दोनों भैया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
1: हाँ।

0: ये कही नहीं तो हमारे किसान भैया बहनी मन बर एक बहुत सुघर योजना है, हितेशी योजना है, भलाई करे वाला योजना है। और एक गोट करी देखी रौरे जानत हो जब 2007-08 में ही इला शुरू करल गए रही और एक जो उद्देश्य कर गोट करी तो हमारे जो खेती किसानी होत है उमें कृषि कर क्षेत्र में कहीं निवेश ला बढ़ाना है और ताकि हमारे किसान भैया बहनी मन कर आय हर जो है दुगुना तिगुना हो और उत्पादन घलुक हो।
1: देखी भाई ये योजना कर अंतर्गत कहब नहीं भजन भैया तो कृषि होगी राउर जेकस कहें वही कस उद्यानिकी भी है, पशुपालन भी है, मत्स्य पालन है और सिंचाई मना है तो ये जम और कहीं ना कहीं खेती पाती ले जुड़ल है। तो ये क्षेत्र में देखिए दे सहायता कही तो भाई भेटाए कर सुविधा ये है और किसान मन ला कहब तो सरकार चाहते कि चटिक नया नया तकनीक से जुड़े अब आधुनिक कृषि उपकरण जो हमर जग उपलब्ध हैं ते मन ला भाई वेद पालन करें उपयोग करें और उत्पादन लागत ला कम करके चटिक अपन फायदा ला बढ़ाए।
0: फायदा कर गोट करें विनु भैया तो देखिए ये योजना कर फायदा कर बात करी नहीं तो जो हमर खेती किसानी में हमन जो यंत्र कर प्रयोग करथन मशीन कर नहीं उमें अनुदान घलो सरकार दिहता है संगे संगे बीज कर गोट करी खाद कर गोट करी और जैविक खेती कति देखी प्रोत्साहन ला देहत है और खास करके सिंचाई सुविधा ला भी मतलब आगे बढ़ाए बर ये योजना में जो है फायदा ला करवावता है।
1: हाँ देखी काबर नहीं भजन भैया अभी कर जरूरत है देखी राहुल जब भेंट हो तो जरूर ये बात ला कथी कि जैविक खेती हर अभी कर जरूरी है, आधुनिक खेती हर जरूरी है और पानी बचाए कर हिसाब से सूक्ष्म सिंचाई तकनीक हर घलो जरूरी है। तो भाई जल संरक्षण ला देखी चाहे कम लागत ला देखी नहीं तो ओहर आवश्यकता तो हवे ओकरे बर ये जो योजना है ते में सूक्ष्म सिंचाई होगी जैविक खेती होगी चाहे प्राकृतिक संसाधन कर संरक्षण ऊपर एदे विशेष रूप से ध्यान देहल गई से एकरे से किसान मन कर उत्पादन क्षमता बढ़त है और पर्यावरण संरक्षण में भी कहब तो हमन ला सहायता भेटात है।
0: देखी रौरे केहन पर्यावरण संरक्षण पर भाई हमन ला सहायता भेटात है बाकी मैं एक और वेट करना चाहूँ कि भाई पर्यावरण जे तरह से जलवायु परिवर्तन होता है काबर की कार्बन उत्सर्जन होता है वैज्ञानिक मन कहता है और यह हमारे देश कर मतलब चुनौती नहीं है हर एक तरह से वैश्विक चुनौती हवे। तो ये जो चुनौती है ये जो समस्या है उकर समाधान हमन ला देखी मिलजुल के करना पड़ी। मिलजुल के करना पड़ी है कि नहीं।
1: हाँ देखी भाई कोई भी समस्या कर समाधान हर नहीं एदे मिलजुल के ही होयल और भाई एक झन एदे राउर सोचब कि कहीं बड़े काम ला उसराय ले नहीं तो यार नहीं हो पाए तो योजना राउर जेकर गोट शुरू करे नहीं ओहू हर वही का सहाय अब हमन ला भाई जुड़ना पड़ी तबे कोई भी योजना हर एदे सफल हो पा रही नहीं।
0: और देखिए बढ़त है यदि कार्बन उत्सर्जन हर एकर से का है कि ये धरती कर हमर तापमान हर देखिए दिनों दिन बढ़त है जेकर कारण जो ग्लेशियर कथे तेहर पिघलत है और मौसम चक्र में बदलाव आवत है तो यही स्थिति में कभी सूखा हो जाए कभी बाढ़ हो जाए जिसे अभी ढेरे गर्मी बाढ़ गई तो ऐसा स्थिति में देखिए जो प्राकृतिक आपदा कथन ओहर बढ़े कर संभावना बढ़ जाते तो ये हमर देश कर नहीं बल्कि ये कही की एक चुनौती है पूरा वैश्विक चुनौती है
1: संसार भर। देखिए भाई राउर सुघर बात कहें कि अभी कार्बन कर जो उत्सर्जन होता है जेकर चाडू राउर कहें कि अभी देखिए दे बेमौसम सब जाथर हो जाता है और जो सबले बड़े समस्या अजय अगर हमरे बैठ के गोट करत ही नहीं तो देखिए गर्मी हर है और गर्मी कर बाढ़े कर कारण कहीं ना कहीं देखिए एहू हर है एगो तो राउर जेकस कहें कि ये विश्व भर कर पूरा दुनिया कर पूरा संसार कर सबले बड़े समस्या है तो मिलजुल कर जो गोट ला राउर करत रहन नहीं वो हर देखिए एहू जगह दे जरूरी हो जाए कि एकर से निपटे पर नहीं हमन ला मिलजुल के अपन स्तर से प्रयास करना पड़ी।
0: बहुत सुघर कहें भाई मिलजुल के हमन जो ये प्रकृति कर संरक्षण करे कर जब हमन संकल्प ला लेबो कि हमर जो आस पास हर हमर वातावरण हर स्वच्छ रही हरा भरा रही तबे जाके हमन देखी सुरक्षित भविष्य के निर्माण में हमन अपन भागीदारी ला निभा सकत हन
1: लेकिन ओकर ले पहले एहू बात आ है भजन भैया कि हमन ला जानना पड़ी कि भाई एदे का चीज से हर एदे हिकले तो देखी कार्बन उत्सर्जन कर मुख्य रूप से अगर हमरे बात करी नहीं कोयला होगी पेट्रोल होगी डीजल होगी चाहे प्राकृतिक गैस होगी एकस जो जीवाश्म ईंधन है ना

0: तेमन कर अगर हमरे बगरा उपयोग करत ही ना तो कहब कि भाई ये दे ए कार्बन कर उत्सर्जन होयल, चाहे उद्योग मन कर माध्यम से, चाहे वाहन मन कर माध्यम से, चाहे आने जो हमरे बिजली मन कर उत्पादन करती, चाहे जंगल मन कर कटाई गलो हमरे करत ही नहीं, तो एकर से कहीं एकर उत्सर्जन हर बढ़त है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ल गोठ बात हमरे करत रही कि भाई बगरा ले बगरा रुख लगाई, लीघे सब्जी भाजी लेहे पर जाना है तो ए दे भाई हमर जो दुई गोड़ कर गाड़ी है ते में जाई, चाहे साइकिल में जाई, ओकर ले हमर जांगर हर भी मजबूत हो ही और देखी पर्यावरण हर भी मजबूत हो।
1: बहुत सुघर रौरे कहत हन, हमन ला जरूरत है ऐसन समय में। देखी ऊर्जा खपत ला जब बात करथन, ऊर्जा कर खपत कम से कम करना है। और रहीस रौरे केहन की भाई जंगल कर कटाई, तो अभी तो भाई देखत हन भी हमर गाँव गंवई मन में जो जंगल मना है तेहर सही बात की आजकल काटत जात है, तो ओकर प्रभाव देखी हमन ला दिखत है। पहिल जमाना मन में देखी हमर सरगुजा भाई जंगल पहाड़ से घिरल रही, और ये कही कि एतेक टाइम तो भाई बढ़िया हुरहुर हुरहुर लुहुर लुहुर हवा चले, दिन भर घाम, लेकिन सांझ होए कि लुहुर लुहुर हवा चले।
0: चटिक बस एगो साफी धरे रही, मौका ऊपर चटिक धुक ली, नहीं तो भाई आज कस कहाँ ये दे कहब तो ये दे पंखा मन कर खो जाता ही, कूलर मन ला खो जाता ही, अब कहूँ कहूँ कहब तो बिना एसी करे दे भाई नहीं सका आता है। तो पहले देखी एगो साफी धरे रही, चटिक हवा हर माढ़े नहीं तो धुक ली, काम हो जाए।
1: तो एकर समाधान यही है बिनु भैया, देखिए हमन मिलजुल के प्रयास करब, रौरे केहन ना सामूहिकता कर ये समस्या हवे। एकर बड़ी देखी कि हमर जो ग्राम संध्या होते और एक ही जो हमर कहीं नहीं गांव में जो वन विभाग कर भाई आदमी मन रहते और वन समिति बनेल, उमन ला ध्यान देना जरूरी है कि भाई जंगल कर कटाई कम से कम होए, और जैसे भाई बरखा आए वैसे जो है पौधा लगाए। काबर की अभी देखत हन कि बहुत झन भाई ये दे जंगल तो जाते हैं, बाकी ये झूरा लकड़ी ला तो काटबे करते हैं, संगे संगे काचा लकड़ी ला लोग काट के ले आते हैं लकड़ी को। तो हमन ला ध्यान देना है कि जंगल कर कटाई ला नहीं करना है, का कहती रहोगे?
0: देखी भाई सबले बड़े बात यही है कि देखी भाई ये दे अगर हमन बिगाड़े बर भाई अगर आए जाती तो बिगाड़ दे हती, लेकिन ओला नहीं करना है। काबर की आए वाला हमार पीढ़ी ला भी बढ़िया स्वच्छ वातावरण हमन ला देना है, अब अपन स्तर से अगर हमरे एकर अलावा भी प्रयास कर सकत ही, वो हमें देखिए दे गाड़ी मन कर उपयोग हमरे करत ही नहीं, तेला कम करना है, और सार्वजनिक वाहन जितना होगी भाई कहो जब जाना है तो दुई झन चार झन जावा, अपन अपन गाड़ी ले बढ़िया है कि एगो गाड़ी में चार झन जावा, नहीं चार झन कर देखी भाई डीजल पेट्रोल खर्चा हुई तेकर ले बढ़िया एक झन कर खर्चा हो, चारों झन मिलके यात्रा कर सकत है, बिजली कर बचत हर बहुत जरूरी होगी, भजन भी संग संग दे भाई झोला लेके भाजी मन ला ले जाए, प्लास्टिक कर सीमित उपयोग करी तब बात हर बनी।
1: तो रौरे देखी गोड बात करत करत दे बेरा ला भूले जात है,
0: लगी तो बताई भाई कितना होगी।
1: देखी भाई अब हमर बेरा हो चलता है भाई किसान वाड़ी कार्यक्रम में जाए कर,
0: हाँ तो लगी आज बताई भाई किसान वाड़ी में कहा जाता है।
1: देखी भाई किसान वाड़ी के अंतर्गत किसान संध्या, और भाई हमन जाए रहे गाँव परसा, वहाँ कर किसान भैया बहनी मन जब सुघर गोएट बात हुई से है तो ओला तो सुनल जाए,
0: लागी तो सोच सुना ही भाई।

0: किसान वाणी सुनवैया जम्मू किसान भैया बहनी मन कर स्वागत है। और सबसे पहले बिनु भैया, देखिए भाई, किसान वाणी कार्यक्रम में आए हैं तो जय जोहार तो करना पड़ी किसान भैया बहनी मन ला।
1: हाँ, जम झन लाए दे जय जोहार करत ही। और जानत ही जैसे कि आज कर दिन भाई ऐसे रहल नहीं कि हमरे गोट बात करे बर आती कोई न कोई गांव। और देखी उनकर खेती पाती कर जगह में जाती कहब तो खेत में है तो खेत में, डांड में है तो डांड में। और ओकरे चारू ये कार्यक्रम कर नाम हमरे रखे ही किसान संध्या। तो किसान संध्या में आज जुटी है देखी 10-12 गो किसान है देखी। और ये जगह आए नहीं भजन भैया, एकर नाम है देखी हमरे पहुंचे ही परसा। और ये जग जो परसा गांव है नहीं।

0: तीन गांव हर आपस में जुड़े,
1: अच्छा कौन कौन गांव?
0: तो कही तो परसा तो है छे,
1: हाँ
0: संग संग हौसली है
1: अच्छा
0: आउ केपी अजीरमा घलो भी है।
1: अच्छा
0: तो तीनों गांव कर किसान एदे जुटीन है, तो गोट बात ला हमन करत ही कि का खेती पाती करत है आउ कैसे काम बूता हर चलत है, कैसे कैसे कमाता है। तो लगी तो राउर कहाँ ले गोट बात ला शुरू करब एदे करी तो।
1: रउरे जिसे गाँव में लाने में देखें कि कतेक सुघर गांव, जहाँ कहीं पीपर कर छाव और कहते कि भाई इतने सुघर इजक कर जो वातावरण लागत है ने, और इधे देखी हर बेर हर बूढ़े वाला है नी, और हमर जग इतना अच्छा किसान मन जुड़ी न है, और इतना सुंदर यहाँ कर प्राकृतिक जो वातावरण है, मोर तो मन ला जो है हरियर कर दीस अभी
0: हरियर कर
1: जेठ
0: दे,
1: कर महीना में।
0: जेठ कर महीना में हरियर कर दे। सामा मन देखिए दे, कोई रुख नहीं है जेमे नी फरी से, मन हर करते एको लबेद मार के दू चार को बीच के चली
1: और
0: नहीं।
1: रास्ता में देखें कि बरन बरन का साग भाजी लगाई है नहीं, तो लगाए वाला ही मन हमर किसान भैया है, यही मन अन्नदाता, तो ये मन ला सबसे पहले जोहार कर लेते सब जन ला, जय जोहार।
0: तो लगी भजन भैया गोट बातला राउर शुरू करी तो।
1: तो देखिए सबसे पहले जेकर माध्यम से हमन आज गांव में पहुंचे हैं, उनकर जो गोट बात कर ले थे, तो राउर कर का नाम?
2: मोर नाम सूरज यादव।
1: आज हमन रउरे कर गांव में आए हैं नहीं, रउरे कर परिचय ला कही।
0: देखिए दे भजन भैया राउर सुगर कहे ने दे सूरज यादव हैं और बढ़िया राजनीति में सक्रिय हैं और संग संग दे भाई खेती पाती भी करता है। तो देखिए हमर गोट बात तो किसान जग होल, तो किसान का रूप में राउर सूरज भाई बताई कि अजय का खेती पाती करे।
2: तो आज आप मन हमारे गांव में पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं आप मन का स्वागत करना चाहूँ कि हमारे बहुत भाग्य है कि हमारे गांव में आप मन आकाशवाणी के माध्यम से हमारे गांव में पहुंचे हैं, और हमन हमेशा खेती करता है ही, तो अभी गर्मी के सीजन में हमन गेहूँ लगाए रहे हैं और कहीं कहीं उड़दा लगाए रहे हैं,
1: अच्छा
2: और बीच में टमाटर और खीरा लगाए रहे हैं, तो सब अभी गेहूँ तो लोर ढा रहे हैं और उड़दा अभी लोर थी और टमाटर खीरा चलाता है।
1: अच्छा
2: ओ,
1: भाई अभी टमाटर और खीरा चलत है नी,
2: ओ,
1: और अभी तो रास्ता भर में देखत रहन कि भाई केहन कोनो खीरा लगाईना है, कोनो टमाटर तो कोनो ऐदे डोड़का तो कोनो भाई अलग, और बरन बरन कर खेती। तो टमाटर कर खेती कर गोट करी, तो टमाटर के खेती में अगर सबसे जो पहल तैयारी कैसे करना पड़े?
2: टमाटर में का है ना कि पहले जिसे बरसात के खेती करते टमाटर का तो ढेर दवा बीरो लगे, और गर्मी खेती हम ठंडा में शुरू करती,
1: अच्छा
2: ठंडा में बढ़िया जोत के ला क्यारी तैयार करके खाद गोबर डाल के, और जब करती है ना तो हर जैसे गर्मी में पानी कम गिरेल तो कम दवा लागेल,
1: अच्छा
2: कम दवा लागेल अच्छा फसल होएल, हल्का फुल्का बन होएल तो ला खरपतवार पर कुछ दवाई मारती, कुछ निंदवाई के बनिहार से खत्म कर देती, और बाकी बढ़िया फल में होएल ठोस फल होएल और बिना दवाई के होएल
1: अच्छा
2: तो हर खाए में नुकसानदायक नहीं होएल, लोग मन पर पौष्टिक भी होएल और अच्छा फसल होल, तेमें भले सस्ता रेट में बिके लेकिन वहर अच्छा हम लाभ दे के जाएल।
1: हाँ, तो सूरज भैया देखिए रउरे प्रगतिशील किसान ही, आधुनिक किसान कही, बिलौती कर जो खेती है ओमे रउरे कहन के भाई प्रारंभिक तैयारी बड़ा अच्छा बताएं, बाकी ये बताई कि एकर बीज व्यवस्था रउरे कहाँ ले करें?
2: जैसे कहा है ना कि हमन अपन से तैयार करती ना तेमें बहुत दिक्कत हुई, तो हमन अपन बीज चुन के और कोई न कोई ईसन में देती
1: अच्छा
2: जहाँ तैयार करते हैं बीज,
1: हाँ
2: अंबिकापन कई प्रकार के है जैसे
1: हाँ हाँ
2: जानकी विभाग है,
1: हाँ
2: ओकर बाद अलग अलग जैसे कई गो देहत है सेवा,
1: हाँ
2: 1 रुपया 1.5 रुपया में प्रति पौधा के हिसाब से हमन ला बेचते हैं,
1: अच्छा हाँ
2: और ओकर बाद हमन वाला जब करती ना स्थापित प्रत्यारोपण करती तो अच्छा हमन ला फसल का पैदावार मिले।
1: खेती किसानी में गोट करीब भैया, तो देखिए पहल सीढ़ी होते दे बीज नहीं, अगर पोट बीज भेटे से अच्छा बीज हो सब अच्छा पौधा हो भेटाएगी समझ ला, तो ओकर देख रेख अगर हमन सही करब तो पैदावार अच्छा होगी, बाकी देख रेख कर गोट करिए सूरज भैया, तो का का जो है ओमे तीहा जतन करे के लागेल, कतेक पानी देहे के परेल, पहले तो बताई कै एकड़ में लगा ही?
2: अब हमारे बरसात की खेती 8 से 10 एकड़ में हो,
1: हाँ
2: और गर्मी के 3 4 एकड़ में हो,
1: हाँ पानी कर कटिंग कर दे समस्या हो जाए नहीं,
2: हाँ ड्रिप सिस्टम लगाए कि अच्छा उन्नत खेती कर ले।
1: तो बहुत अच्छा बात करें भाई, ड्रिप सिंचाई कर व्यवस्था रउरे जग है, और इतना अच्छा यहाँ पानी कर मने कमी नहीं है, जेठ कर महीना में घलू देखत है हमन आया हैं बिनु भैया, तो देखिए जगह जगह दे कोनो जगह दे ढोड़ी रूप में तो कोनो जगह नरवा रूप में तो कोनो जगह दे जलाशय रूप में देखे बार भेटावत है, निदन जेठ महीना में देखिए झूरा झार दिखेल नहीं, और ये गाँव में बड़ा हरियर दिखता है, सब लगाईना है फसल बरन बरन कर। मैं ये कहना चाहूँ सूरज भैया कि आजकल बदलती दुनिया में देखिए महंगाई घलू बढ़ता है, और हमारे खेती किसानी में गोएट करी नहीं तो फसल

0: कम भी हो जाए कभी, अगर मेहनत अच्छा करा तहन तो लाभ तो भेटा, बाकी आए वाला समय में राउर का सोचे थी हमारे किसान भैया बहनी मन ला कैसे फायदा भेटाए, कैसे मेहनत करें, कैसे का
1: है ना भैया कि देखा हमन तो ये चाहते कि सब गोबर खाद उपयोग करें, साथ में रासायनिक खाद लेना ही पड़ेल तो उकर से ज्यादा पैदावार हो, तो अब गोबर खाद का भी उपयोग हमन करना चाहती, साथ में सोसाइटी से जो मिल पात है वो खाद यूरिया का भी उपयोग करके हमन खेती करना चाहती, और सबके सलाह भी देती कि आप सब अगर सब समय है जो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो तो डीएपी खाद का अपन उपयोग
0: व्यवस्था बना ले,
1: हम व्यवस्था बना ले, व्यवस्था बना ले तो बाद में दिक्कत नहीं।
0: चलो बहुत अच्छा लगे इस रौरे सिंह गोयड बात करें ना, जो इतना अच्छा रौरे जानकारी देन अपन अनुभव ला शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बाकी एगो किसान आऊ वहाँ गोट करे थी राउर, नाम ला तो बताते हैं
3: राजकुमार रजवाड़े है मोर नाम।
2: राउर ये देखी भाई खेती पाती में का करे ही तेला बताइए जी।
3: अभी तो भाई टूट रहे धारे।
2: अच्छा। तो भाई
3: गेहूँ सब लगाए रहे,
2: तो कितना जगह में लगा रही गेहूँ?
3: अब ढेर खेत बारी नहीं है, तनी कम कम जगह में लगाए रहे।
2: तो सब ला उसरा देहा?
3: हाँ,
2: मिस मास देहा?
3: हाँ मिस धारे।
2: तो मिसे कर बाद कर बताई भाई रखे ही की बेचे?
3: नहीं उला तो भाई खाज भरी खोल
2: बगरा
3: नहीं हुए,
2: बगरा नहीं हुए नहीं,
3: तनी मनी बाचल तो सीजन सीजन में बेच थी,
2: लेकिन गेहूं
3: पैसा का जरूरत पड़े थे खुनी,
2: लेकिन गेहूं जिसे लगाते नहीं तो सबले पहली बात हुई सिंचाई का सुविधा। राहुल जग का है
3: तो सिंचाई मंदे हम तनी कम लगाती, लगभग सिंचाई की व्यवस्था नहीं है हमारे। तो वही इस संबंध सरबती नहीं कहते हैं।
2: अच्छा,
3: वही मंदिला बूंद दे रही
2: तो चटिक मटिक पानी में हो जाए।
3: हाँ वो हा, तनी मनी में हो जाए।
2: तैयारी ला बताई तो कैसे कर रहे हैं?
3: तैयारी तो कर जैसे धान हम
2: सकेले,
3: हाँ सकेले ना, तो नांगर में जोत के, वे नांगर तो आजकल तनी कम है तो कभी कभी ट्रैक्टरों में,
2: हाँ तो
3: देखो इसे जोत जू ना खेला बूंद दे थी।
2: हाँ भाई ये देवो में भाई ज्यादा तिहा जतन नहीं पड़े,
3: हाँ तनी कम कम लागे तनी,
2: साग भाजी नहीं लगाई?
3: साग भाजी लगाती तो बरसात में लगाती,
2: का लगाती
3: टमाटर कभी कभी लगाती।
2: हाँ,
3: ज्यादा साग भाजी तीन लगाई, भिंडी वगैरह कभी कभी बुन दे रही,
0: टमाटर की तैयारी करता है।
2: अच्छा,
0: ए राजवाड़े भैया,
3: हाँ
0: ये दे देखी नौता पर जैन कहियो किसे अलहर बलहर लागत है ना, रौरे घर पसीना चुगत है बाकी जब बरखा आही तो बरखा आही, लेकिन का अभी देखी कते ना भाई आगुले योजना
3: आकाशी गिरे नहीं तनी हुल जुतवाए रथिया,
0: वही ल कहत हो माने भाई भेला मतलब पायस ले
3: आ हां नहीं ओला ओला जुतवाए रथिया आकाशी से अभी पानी गिरिस नहीं तनी नांगर लते जुतवाए दे।
0: अच्छा
2: हां तैयारी है मतलब?
3: हां तैयारी, टमाटर लगा छी
2: ढेर। हां देखी भजन भैया यहु सुघर खेती पाती करत है, और देखी जैसन व्यवस्था वैसन है खेती पाती।
3: हाँ
2: भाई बरखा में बढ़िया व्यवस्था है तो बरखा कर तैयारी करता
3: है, और पानी की व्यवस्था तो नहीं कम है नहीं तो ऊपर को ज्यादा भरोसा रहे।
2: बाकी भजन भैया देखिये आओ किसान मना है जोहत भी है कि मोरो से गोट करती लगी तो करी।
0: राउर कर का नाम?
1: सूरज मंथ है भैया नाम।
0: गर्मी कर समय चलता है अभी खेती किसानी कर गोट करी तो का रौरे लगाए
1: गर्मी में? तो गेहूँ लगे रही भैया।
0: अच्छा, गेहूँ में बढ़िया फसल उत्पादन बढ़िया हो रही?
1: हाँ बढ़िया,
0: तो एक लाभ भेटे न?
1: हाँ भेटा ही से कनी बनी खाए बर रखती बाकी तो बेच देती।
0: हाँ और साग भाजी कर गोट करी तो का लगा?
1: साग भाजी हमार बरसात में लगाती भैया।
0: अच्छा, अभी
1: टमाटर की तैयारी चलत?
0: अच्छा, और भी टमाटर कर रही खेती कर तैयारी।
2: तो गाछी करती कि कहीं ले लान थी?
1: गाछी तनी बनी करती अपन घरे में, बाकी तो वही नर्सरी मन ले उद्यान मन ले ऑर्डर दे देती। तो
2: का खास बात रहे की उद्यान मन में ले ऑर्डर देना पड़े राहुल के?
1: तो हमको उतना जानकारी अनुभव नहीं है खेती बाड़ी का, ओकर चलते हम उद्यान मन ले बाकी अपन से प्रैक्टिकल करते रहती भाई सक्सेस जा अपने अपने कर नर्सरी।
2: तो कुल मिला के पोट रहे वहाँ कर।
0: तो अभी आए वाला जो समय देखी खरीफ करा है भाई, जैसे अभी तो नौता पा चलता है तहाँ धीरे धीरे मानसून भी गिरी, तो आगु कर रहे कर रणनीति का है, का योजना है, का करे कर विचार है?
1: बस वही भैया अभी टमाटर का तैयारी वारी चलत है, जोताई कोड़ाई चलत है, ओकर बाद फिर नर्सरी आही, नर्सरी आही ओकर बाद फिर खाद वाद डाल के आदमी एक आध महीना छोड़े के बाद फिर पौधा रोपण हुई और बाद अपन चालू हो जाए टमाटर खेती, धीरे धीरे फिर धान पान का भी चलते रहे।
0: हाँ धान पान कर गोट करें, मोर इशारा वही कहती रही काबर की भाई हमारे प्रमुख फसल फसल धान हो। बाकी आए वाला समय में देखिए धान रोबे लगा चाहे भाई उर्दा लगा नहीं चाहे मूंगफली लगा, तो एमे का सोचे थे कि धान के साथ साथ अब का लगाए कर विचार है?
1: मकई लगे भैया। अच्छा, मकई है 2-4-5 एकड़ के मकई लगे।
0: हाँ तो भाई जोंडरी बारी कर मजे कुचर लगे। मैं कहते रहे गोट बात कर संगे संगे, देखिए कुछ संदेश मनाया वाला सुन लेते हैं।
2: लगी तो
4: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
5: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: सुगर संदेश मंडला तो सुनवान भजन भैया, बाकी देखिए गुआउ किसान है, अब ये एक तक देखत है कि मोर नंबर हर कब लागी गोट बात करे में।
1: राम राम।
7: राम राम।
1: का नाम राम?
7: मोर हरी नाम है।
1: तो बताई भैया, अभी खेती पाती में का करो रे? करे हम
7: नहीं, अभी फिलहाल में तो कुछ नहीं है, क्या की थोड़ा पानी के साधन कम है, तो अभी फिलहाल में नहीं है।
1: तो रबी फसल में का ले रहे?
7: मैं चना, मसूर, मटर और कुछ काच में गेहूं भी रही, फिर बाद में वो गर्मी वाला मक्का भी लगाया रहे।
1: देखिए कथे ना कि चना, मटर, गेहूं बुआवत है।
6: हाँ।
1: और हरियर है किसान।
6: हाँ, हाँ,
1: और धन धन रहे किसान।
6: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो रबी फसल कर जो गोटे करी तो मन हर हरियर हो जाते।
6: इतना सुघर रहा और गोट करें नहीं भजन भैया। हाँ। तो मैं कहते हैं खेती किसानी जुड़े लेको गीत हो जाए, इनकर से गोट बात लगातार करो।
1: तो लगी दे, सुन लेते।
6: लगी।

0: हाँ देखी सुघर कन गीत सुनवाएन भाई, और ओकर बाद मैं कहत रहन कि राउर देखी चना मटर कर गोट करत रहन, संग संग कहत रहन कि मकई भी लगाते गर्मी वाला, ये
1: हाँ
0: हिम्मत कर बात है। तो चटिक बताई तो का सोच के गर्मी में दे मकई कर खेती
1: वो
0: कर।
1: बस कह रहे कि लड़का छुआ रहते हैं तो आन कर रहे देख रहे थोड़ा सा ललच थे तो ओकरे चलते कर रहे थे तनी मनी। पानी तो भाई उतना ज्यादा है नहीं कि ज्यादा हम कर सके, लेकिन कुछ खाए पिए रख वही अभी तनी मनी बचल तो लेजबो करती बाजार हाट में।
0: बाकी जैसे आने खेती करती है नगद हो जाता है तो भाई सब जात बाजार में तो नहीं बेच के दे हो सके, ये जैसे हाट बाजार कथी छोटे छोटे बाजार नहीं गांव में बैठल के, तो नगद अगर हो जाता है जैसे धान बहुत हो जाता है तो कहाँ बेचती होला।
1: नहीं मोर तो सोसाइटी में बनल है तो वहीं दे ऑनलाइन धान ला।
0: सुविधा है बढ़िया हो जल।
1: बढ़िया सुविधा है हमारे गांव में है ना,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो भाई वहां ले जाएगा लाने के साधन है बढ़िया, तो वहीं ले जाती मंडी में देती
0: कितना दूर हो ही राउर घर ले मंडी
1: और घर
0: से।
1: से लमसम आधा 1 किलोमीटर।
2: देखिए रे बहुत अच्छा गुठियात है, बाकी खाद पानी कर गोट कर आए वाला जो समय है देखिए हमर खरीफ फसल कर बतात है। अभी जैसे सूरज भैया गुठियात रहे इनके भाई खाद पानी कर किल्लत घल खोत है, तो को काबर की भाई व्यवस्था तो बनाना पड़ी, तो
1: हाँ
2: रोग सोचा थे कि नहीं खाद मना कभी ले व्यवस्था कर ले जाए।
1: सोचत रहे ना, हमारे सोसाइटी में तो ये साल नवीनीकरण हुई।
0: तो जनावर बनला भी पोसे ही गाय बकरी है
1: हाँ बैलिया रखे हैं,
0: नांगर।
1: एक नांगर है मौजूद मतलब 3 ठे है, लेकिन ये भाई में चाल चाल के चलाना पड़े।
0: अच्छा चाल चाल के आजकल
1: कोई घनी
0: बैलिया
1: भाई
0: चल
1: थके हो जाते नहीं
0: चल चल
1: बैला।
0: चल। हाँ तो भाई ओकरो गोबर होल तो ओकर भी तो उपयोग कर
1: हाँ,
0: सकत
1: हर
0: ही है।
1: साल वाला करती भाई, एक साल एक ही ट्रिप हो से दूसरा साल दो ट्रिप हो जाए।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो
1: तो
0: भाई गोबर खाद कर कथे नहीं कोई तोड़नी है
1: हाँ
0: का कथी रहा।
1: मैं तो वही सोचूं कि भाई सब किसान मन ज्यादा से ज्यादा यूज वही करें। हाँ बाकी भाई नहीं रहे तो करने पड़ी, और ओकर बिगर होबो नहीं करे, रासायनिक खाद के बिगर कहाँ हो पाएल फसल आज के जमाना में।
2: जरूरत है भाई आज कर समय में रासायनिक खाद संग संग आज जरूरत है हमारा जैविक खाद के भी भाई लौटे कर, बाकी देखिए दोनों चीज का समाहार कर के हमारा खेती पाती करना है और फसल उत्पादन ला करना है। गौरव से सुगर गोइट बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बिनु भैया
0: हाँ
2: एक हमर जो है युवा भाई बड़ा मन लगा देखत एकदम धरी कतिले और टेंग टेंग देखत रही।
0: गोट बात ला एकदम मन लगा सुनत रहे
2: तो भेंट करत थी उनकर
0: करत ही करत।
2: राहुल कर का नाम।
1: हमार संग
2: मोर नाम है
1: राहुल
2: राहुल केसरी, पढ़ाई लिखाई कर गोइट करी, तो कतना पढ़ाई लिखाई ले करे।
1: मैं बीए करे हूँ,
2: बीए के बाद अभी वर्तमान में का करत थे।
1: मैं बैंक में काम करत हूँ।
2: अच्छा चला भाई।
0: हाँ तो देखिए भाई खेती पाती करे में नहीं बैंक का आजकल बहुत ज्यादा योगदान है।
2: तो हमारे किसान भैया बहनी मन राउर कर बैंक मन में जात हो
1: हाँ जाते हैं।
2: भाई, ऋण लेना तो पड़बे करी नहीं,
0: हाँ
2: तो
0: हाँ हाँ
2: रउरे का सहायता कर।
1: तो अभी जिसे खेती बाड़ी का ऋण देहत है तो केसीसी के माध्यम से खेती बाड़ी का, तो 70% हमें नकदी देहती और 30% देहती खाद, वो बीजो है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ हाँ
2: सहकारिता से है।
0: तो सुघर तो देखी भाई यू सहयोग करत आए अपन स्तर से नहीं, और गांव कर आदमी हर देखी किसान मन ला नगद समझेल कैसे कहती।
2: देखिए हमारे किसान भैया बहनी मन कर जब वोट करतन
0: हाँ
2: हर वर्ग हर व्यवसाय से जुड़ल है,
0: हाँ
2: काबर की आधार हमारे खेती किसानी है, और खेती किसानी के साथ साथ देखी भाई जब व्यापार कर बात करती, कृषि कर बात करती है ना, संगे संगे भाई शिक्षा कर बात करती, स्वास्थ्य कर बात करती।

0: बैंक तो हमारा आधार हवे,
1: हवे
0: ओकर बिना तो हमन एक कदम नहीं चल
1: हाँ
0: पाते।
1: हाँ हाँ हाँ
0: काबर की भाई व्यापार कर असली दे खून हवे दे पैसा
1: पैसा
0: हो, और पैसा कर गढ़ में बैठी ना है।
1: हाँ, तो नगद सहयोग करत है। बाकी भजन भैया राउल सुरता कराता हूँ, देखी बेर बूढ़े वाला है और बेरा होता है, देखी विदा ले करे गांव ले। जाति जवाति मैं कहत रहन, जुटी नेते में एक जन बाँच गिन है, तो मैं कहत रहन इनका नाव ल तो जाना थी का है।
0: ओ, राउर कर क्या नाम?
2: नाम तो मोर इसे रामू साय है।
0: रामू साय
2: काम
1: बूता कहा करती तेला तो बताई।
2: बूता बस अभी खेती का तैयारी करती, बस थोड़े मोड़े का खेती बाती करती, कुछ उते उते कर लेते।
0: अरे मैं सुने रहे बैगा गुनिया घलू करती कहीं कर।
2: हाँ भाई शुरू से करते हैं, हमारे घर करते आते हैं। वो तो भाई आप
1: परंपरा
2: हाँ
1: है।
2: परम
0: देखिए हमन भुलात जात हन
2: हम्म,
0: भाई, एक जमाना रही भाई गांव में हमन शुरुआत हुए, तो भाई ये देखे ही कि धान मनला हमन बुने से पहले जो है का कहते हैं गंगा दशहरा में है ना वही पूजा पाठ करें। तो रउरे का देखती पहिल कर समय में हमार जो पुरखा पंगत मन रही, रउरे ला चटिक सुरता हो ही तो कैसे कैसे करते हैं आजकल भुलाए जाते हैं आजकल कर किसान।
2: कहा है ना कि अभी हमारे गांव में जो होयल पूरा जो जैसे मान लिया
0: कटौती
2: हाँ सबसे पहले कठोरी होयल,
0: हाँ
2: और उमे मतलब सबसे पहले जो खेती की शुरुआत हो जाए मान के चला है ना, और फिर जैसे ओकर बाद अभी दशहरा है। अब दशहरा के बाद जैसे लोग पानी का तलाश करत हैं, और जैसे हुई ओकर बाद बीज का तैयारी करिए जोताई करवाते हैं अभी सीजन पे है ना। सब अभी जितना किसान अभी जुट गए हैं, तो कहीं हाल है तो खेती ले जोतवात हैं, और बीज मन के कहीं कहीं नहीं है तो जुगाड़ पानी करते हैं खाद मन के। अब पानी अब मान कर चले मई है भाई लास्ट है,
0: नौतपा चलता है, नौतपा बाद
2: जून
0: वही देखिए जून
2: में
0: व्यार
2: कब
0: शुरू हो
2: आ
0: जाता
2: जाही ओकर कोई गारंटी नहीं है पानी
0: है।
2: है। तो वही कुछ धान कर और कुछ टमाटर मगर सब किसान मन अब हमरू का बोलते हैं रउलो मन हमन सब मतलब जो हम पूरा तैयारी में लगे ही। अब भैया गुनिया तो बात हो अपन भी चलते रहे लो तो
0: मोर के मतलब वो परंपरा ला रेल जिंदा रखना है। काबर की देखी हमार जो परंपरा है आजकल विलुप्त हो जाता है। मैं देखो उनकी पहले गांव में रही की भाई देखा कठौती बनाते हैं, तेकर बाद सामूहिकता कर बोध है बिनु भैया मिलजुल के हर तीज ला त्योहार ला मनाए, आजकल भुलाए जात सिर जात
1: हाँ,
0: है करी।
1: समस्या कर समाधान गांव कर लोग आपस में मिल के कर लेते हैं,
0: हाँ
1: वही रही हमार परंपरा।
2: कहा है ना बिनु भैया कि भाई जिस जिस हिसाब से गांव है, तो गांव में जितना भी है तो बिना बैया गुनिया बिगर गांव भी नहीं बने। और यार जब तक गांव रही तब तक ये परंपरा नहीं, जब गांव रही तब बैया ला भी रहे पर ही है ना। तो हिसाब से अब भाई अब देखा अभी तो भाई सब चलत है, अब परंपरा दादी पुरखा मन हमारे घरे द्वार सब करत है, अब हिसाब से जिकस चलत तो भी आगे भी ला करने
0: बिल्कुल
2: पड़
0: जीवित
2: ही
0: रखना है।
2: है।
0: काबर
2: जरूर
0: की
2: वही
0: गांव
2: बात
0: कर
2: है।
0: संस्कृति, गांव कर
2: हाँ
0: परंपरा और गांव कर जो सभ्यता है वोला जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अपन गांव कर संस्कृति हमारे जड़ से जुड़े रहना है, और वही जड़ हर हमारे जीवन कर पुष्पित कर ही पल्वित कर ही और आधार बनाई। अब परंपरा ला बैगा हमारे जो भैया है किसान भैया वो कहत है कि हमन बनाए के रखब। बहुत अच्छा लगी आज गाँव परसा में आयन, और सब किसान भैया बहनी मन जब मस्त लेकिन गोट बात करें दौरे का।
1: अब देखिए भाई इतना बढ़िया डोंगरी पहाड़, कहीं तो रूख राई आऊ, कहीं तो कहूँ कती आजकल देखी नहीं नदी मन्नी दिस है, बाकी छोटे कने दे कहीं तो नदी कहली, नरवा कहली, झरना कहली, बढ़िया बहुत है। अब वही तरी दे बैठाई ना बढ़िया दे चटी के, हाँ तीन गांव दे सकलाए रही, और चटिक चटिक झरझर झरझर पानी कर आवाज आ ये गोट बात। अब देखिए अब बीरा हर ये कहता है कि ये जो प्रकृति कर आनंद रहिस
0: मन तो
1: नहीं।
0: करता है कि यही जगह रही जाए,
1: हाँ हाँ बाकी
0: बाकी ऐसा ना है कि भाई मेरा हर गलत है
1: हाँ
0: और जाना है बड़ा दूर।
1: हाँ
0: तो सब किसान भैया बहनी मन ला कही हमन जात ही अपन शहर,
1: हाँ
0: और सब जन ला कही राम
1: राम राम।
0: राम।

0: हाँ तो भजन भैया देखी भाई दे सुघर अभी गोट बात हमरे गए रहन गाँव कर नाम रहिस देखी परसा आ वहाँ बढ़िया सकलाए रहिन तीन गाँव कर किसान मन के पी अजीरमा हौसली और परसा कर नहीं और सुघर देखी गोट बात करेन और संग संग कितना बढ़िया नज़ारा हमरे देख के आ ही खेती पाती ले जुड़ल नहीं।
1: हाँ भाई अभी हमन खेत कति जब हमन जाएन उते तो देखेन कि देखी गांव में नहीं सबे घर में कुछ न कुछ लगाई न है और सब्जी वर्गीय फसल भी करी न है।

0: और देखत रहन कि भाई बड़ा अच्छा गांव रही, बाकी बदलत मौसम में अभी अगर हमन गोइट करी तो देखी घाम हर बढ़त जात है। ऐसन में देखी हमन आस पास कर जो हमारे जो जानवर मन है उमन कर तिहा जतन करना, चाहे हमर जो सियान मन है चाहे लड़का मन है उमन ना तिहा जतन करना बहुत जल्दी है जरूरी है। देखत ही तापमान हर बढ़त है, घाम हर ढेरे बढ़त जात है, तो राउर का कहते?
1: देखी भाई ये दे सही बात ला राउर शुरू करे ही देखी काबर की भाई अभी कर समय में नहीं ये हर देखी ये दे बीमारी ले बचे कर उपाय है कि राउर अगर घर ले हिकलत ही तो देखी कोशिश करी कि भाई बिहाने ये दे 10 बजे ले पहले काम ला निपटाई और शाम के अगर काम आया तो 4 बजे कर बाद हिकली। अब अगर बीच में कोई कारण से बहुत जरूरी हो जाता है अब हिकलना पड़ता है नहीं
0: तो कुछ साफी मन लागल
1: वही ला कहत रहे कि देखी भाई पहले तो पानी पी भाई 1 लीटर ओकर बाद हिकली। साफी मन में देखी भाई मुंह कान मन ला बढ़िया दे ढांप के हिकली और बगरा ले बगरा राउ रे शरीर कर अंग मन ढपाए रहे ऐसे कोशिश करना है ही नहीं
0: बिल्कुल भाई। और ध्यान रखी भाई समय समय पे पानी जरूर पियत रही काबर की अगर ऐसा गर्मी में अगर पानी कमी हो तो बड़ा दे अलहन हो जाए।
1: एक संग बेरा देखी अब होगी सहाय आज कर जो किसान वाड़ी है तेला भाई और संग संग देखिए दे चौपाल अभी समेटे कर तो भाई चलल जाए आने दिन फिर भेंट हो ही और कहल जाए राम राम, राम।

किसान भाई बहन सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

सलाम आदाब नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद। मोहब्बत कुर्बानी और इंसानियत का पैगाम लेकर आई है ईद उल अजहा, और इस खूबसूरत मौके पर दिल से दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में खुशियों की रोशनी हमेशा यूं ही जगमगाती रहे। ईद सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि एक एहसास है समर्पण का, रिश्तों को निभाने का और हर दिल में मोहब्बत जगाने का। तो आइए आज के इस प्यारी सी शाम को बनाते हैं और भी खास, जहाँ होंगे आपके पसंदीदा गीत, आपकी फरमाइशें और ढेर सारी दिल से निकली बातें। साथियों, जिंदगी में हालात कैसे भी हों, अगर दिल में उम्मीद जिंदा हो तो हर अंधेरा रास्ता रोशन नजर आने लगता है, क्योंकि मुस्कुराहटें वही लोग बांटते हैं जिन्होंने मुश्किलों को बहुत करीब से देखा होता है। तो चलिए गमों की धूल झाड़कर खुशियों की चादर ओढ़ लेते हैं और रिश्तों को थोड़ा वक्त देते हैं, अपने को अपनों को दिल से गले लगाते हैं और इस ईद पर मोहब्बत की खुशबू हर ओर फैलाते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इंस्टा फरमाइश, अपने रेडियो हम सफ़र रैना के साथ, और वक्त है संगीत के उस खूबसूरत सफ़र का जहाँ हर नगमे में छुपी होगी किसी की भावना, किसी की याद, किसी की मुस्कान। तो ये पहला गीत आप ही के फरमाइशों पर हमने लिया है, फिल्म का नाम है बरसात की रात। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत रोशन का है। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पर पोस्ट करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा, अहमदनगर मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया जावेद अंसारी, सूरज अख्तर सुराज अख्तर, जसबीन सकी

श्रोताओं, सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश में अपनी पसंदीदा फरमाइश भेजने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। वहां प्रतिदिन एक विशेष पोस्ट डाली जाती है। अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा गीत, अपना नाम, पता और आवश्यक जानकारी लिखकर कमेंट करना है। आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों को हम इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ध्यान रखें, ये पोस्ट प्रतिदिन सुबह 10 बजे हमारे सोशल मीडिया पेज पर डाली जाती है और शाम 5 बजे तक प्राप्त होने वाली फरमाइशों को ही कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो देर किस बात की, समय का ध्यान रखते हुए अपनी फरमाइश फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें अवश्य भेजिए। आपकी पसंद को हम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश में ज़रूर स्थान देंगे। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, आपकी फरमाइश की ओर। और ये गीत है फिल्म सड़क से। इसे गाए हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। गीत समीर ने लिखे हैं और संगीत नदीम श्रवण का है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, सज्जन रजक, लालू, सोना मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नौहाकर, निर्मला नौहाकर, विशाल नौहाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तांडे, आशीष मुरहेकर, छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, मिहिर नगर।

उमर खेड महाराष्ट्र से अभिजीत गौहाणकर राही, सरिता गौहाणकर, प्रिंस एकांश गौहाणकर और अंबई सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी गायत्री, यज्ञीश घोड़के, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्य रामटेके, ददेरवा से गंगा शिम्पा, उषा अवनी, अक्षय, हासिम कुरैसी और सिरसला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह, सोनगरा से प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा और कस्बा वराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका गुरकीरत, मन्नत सिमरत, गुरु शब्द राहुल, विजेंद्र जयजान और भोपाल घर गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सड़क का गीत।

साथियों, जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कुछ पल मुस्कुराने के लिए मिल जाए तो उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि खुशियां अक्सर बड़ी नहीं, छोटी छोटी धुनों में छिपी होती हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। और ये गीत है फिल्म दीवाना से अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में। गीतकार हैं समीर और संगीत नदीम श्रवण का है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, मिठू मोड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी, केंदु भाई, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, ग्राम अमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इसी गीत से हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का, प्रीतम और मनोज यादव, और ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरभ साइना और मैंडी शर्मा भी इस गीत से जुड़ चुके हैं। गांव टोरवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वमिका और वाणी थांडी, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धनतरी से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम, शिखा, शिफाली। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दीवाना का ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते थे विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे और सूरज कुमार ढाक से। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, जसवी यादव। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, चांदी कुमारी, नंदनी कुमारी। बारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वफार वकार हैदर, कनी सकीना, हसीना दिलसाद। हिंगड़ी अलोड जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़। और आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा। और बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म दिल से ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार हैं समीर और संगीत आनंद मिलिंद का है। और इस गीत को सुनने के लिए हमें आप सभी की फरमाइश मिली है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णवनान आनंद, सत्यम आनंद, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल, विशु लड्डी खेरा और शालिनी खेरा, टिवानसी खेरा और वानी खेरा। पदमनगर चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद,

शहनवाज अहमद सिद्दीकी। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दिल से ये गीत।

इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप श्रोता साथी हैं गांव खोखरा वाले श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी, शगुन बारासा, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी अनुराग मोहन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से,

राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशूर दान खुराना, दरियापुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नचानी, विनीत नचानी, मिथिल नचानी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा, खरसावा झारखंड से शुक्र नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और इसी गीत से जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने, हीरामन सिंडे, प्रणय प्रसिद्ध और प्रतिभा गोंडाने, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्मी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, अवदीप येले, विश्वदीप येले और एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। श्रोताओं, हर गीत सिर्फ शब्द और संगीत नहीं होता, कुछ गीत हमारी कहानी के ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपने अपने फरमाइश में ऐसे गीतों को पसंद किया है कि हम अपने प्रोग्राम इंस्टा फरमाइश में ज़रूर शामिल करना चाहते हैं। तो चलिए सुनते हैं अब कुमार शानू की आवाज़ में फिल्म मिस्टर आशिक का ये गीत, पसंद आप सभी की है। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, ग्राम देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात, गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी और कंदरा चांद, मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

मिस्टर आशिक के इस गीत से जुड़ने वाले हमारे श्रोता के रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, रघुवीर नगर नई दिल्ली से शमशाद खान, मोहम्मद नौशाद, अशोक कुमार जी पप्पू, सिकंदर खान पप्पू मास्टर, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और ग्राम चरौदा बार नवा पारा से नंद कुमार, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, मलियान सरदाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवम जैन, कोलासर तालुका नांदूरा से प्रमोद बगाड़े, वर्षा प्रतीक, संकेत बगाड़े, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल हर्ष, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अंकुश अरोड़ा, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, और लक्सर आज़ाद नगर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही महराज जहां। इसी गीत को सुनना चाहते थे भाटा पारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, बेबी बैदेही, विद्यांशिका कुमारी अंकित, और अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयमंत्री केवट, ग्राम महेशपुर खेम उत्तर प्रदेश से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और पूरा परिवार, पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखन लाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन। और आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है फिल्म मर्डर से, जिसे गाया है आमिर जमाल ने, और गीतकार हैं सईद कादरी, संगीत अनु मलिक का है।

इस गीत से जुड़ने वाले हमारे श्रोता साथी हैं भाकर पंजाब से मोहम्मद हफिजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान, रेहाना खान, पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्री, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, अल्ताफ, आशिक, मोना अंसारी, यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा, डॉक्टर ईशानी, गुजरात पाटन से धीरज वीराबारी, पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा, ज्ञानभूषण शर्मा, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सलरा मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी, और उज्जैन से भेरूलाल वाक्तरिया, भोला वाक्तरिया, प्रवीण रियांश, प्रतीक वाक्तरिया, और राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, ज़िला फिरोजाबाद चनौरा से बनवारी लाल, मंजूलता, राम, श्याम, रवि आर्यन, रंजीत, दादा बाबू रोड गिरडे से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया अमा खोरड़ा रेंगाकार, कबीरधाम से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्षप्रिया, गीता सरगम, और एमएलवी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण, लव्या, आरव, मेघा, आशीष, अनुज, छोटू, एसके, पप्पी, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका रानी, भानु प्रकाश, और बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, आराधना, रौनिका यादव, चंद्रेश गोहर, सुनील पाठक, और मजनू काटीला से हैं कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुसार सिंह, रंगे शेखावत, बहादुरा नागपुर से वैलेश वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, कुमारी ध्वनि गवाहड़कर, और चौखंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, और जोधपुर सूर्य नगरी राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी चौहान, कल्पित, बीबी गर्वी, और ग्राम पंचायत उदयपुर कोंदला से जोधन सिंह पैकरा, घूरनी करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्य पैकरा। आइए आप सभी की पसंद पर अब सुनते हैं फिल्म फना का गीत कैलाश खेर और शान की आवाज़ों में।

इस गीत को सुनना चाहते हैं डोंडे लोहरा जिला बालोद से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल, कामेश माहिर नेताम और सूरजपुर से सुखराम सिंह मरावी, ग्राम पंचायत परसा सरगुजा से योगेश राजवाड़े, यम्या पार्थ राजवाड़े और बारमेर राजस्थान से बबलेश डैनी, मनीष रामदेवरा से दिनेश चौहान, डबरी से बाबूराम।

हम जयपाल और नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और ग्राम पंचायत सिरकोतंगा महादेवपारा पोस्ट लहपट्रा से योगेश कुमार श्याम फरमान राजवाड़े लल्लू बल्लू खनू अमित कुमार अभिजीत गोविंद अब सकल राम प्रियांशु राजकुमारी नेहा नायरा समायरा खुशी सौम्या सारसताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े सुमार साय श्री भगत हेमंत कुमार और रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी बगबुड़वा पथरिया से रनारेंद्र नेताम कुसुम नेताम अंबिकापुर जोड़ा पीपल से स्वरूपानंद उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव भारती राव बेला सिंह विकास सिंह ओम प्रकाश सिंह।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश अब यही समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार, संध्या आप दिल्ली से सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे।

शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलतगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू

कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक

में हिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए आप सुनिए फिल्म हिमालय की गोद का गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

अभी आपने मुकेश की आवाज़ में फिल्म हिमालय की गोद में का गीत सुना। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म संजोग का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत है मदन मोहन का। आइए सुने।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म संजोग का गीत। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत मदन मोहन का था। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं और अब पेश है कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इस खूबसूरत सफर में, जहां आपकी भेजी हर ईमेल, हर संदेश और हर भावना को मिलती है सुरों की मधुर संगत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना चहेता कार्यक्रम ईमेल की गूंज, अपने रेडियो हमसफर रैना के साथ। तो जुड़ जाइए, क्योंकि अब गूंजेंगे आपके संदेश, महकेगी आपकी यादें और बजेगी आपके पसंद के गीतों की प्यारी दुनिया। तो आज कार्यक्रम में इस पहले गीत के लिए संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, तेलंगाना बहंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान, फरहान, समायरा, आजमीन और गुड़िया, आप सभी ईद मुबारक लिखते हैं, तो आपको भी ईद मुबारक। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी, दीपेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू, आप हैं संकरा से, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास, देवानगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर साय राजवाड़े, समीर सिंह, सोनू सिंह मरावी। और इसी गीत को सुनने के लिए हमसे जुड़े हैं, हमें ईमेल भेजा है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह, और जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी, उमा तिवारी, और सेक्टर 4 कमल विहार रायपुर से कौशल गोस्वामी और रिंकी गोस्वामी। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं लापता लेडीज का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, शब्द रचना है प्रशांत पांडे का, संगीत है राम संपत का।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस अगले गीत को हमने लिया है फिल्म बहार आने तक। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं राजेश रोशन। और इस गीत को आप सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अलकबीर, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और पंखा रोड जनकपुरी से। इसी गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है पिंटू दीवाना और रजिंदर सिंह ओपेराय ने। सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन और शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और लिसनर क्लब मंचला रेडियो अकोला से के शरद पाचपोर, शोभा पाचपोर, बेबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि अक्षय और अभिनव पाचपोर, रामानुज नगर श्रीनगर जिला सूरजपुर से सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, बिमला सिंह, ग्राम पंचायत कौशलपुर भैंसामुड़ा के आप सभी श्रोता साथी हैं। और मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बांसोड़े, रेखा बांसोड़े, अदिति बांसोड़े, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज, अपने रेडियो हम सफर रैना के साथ। कार्यक्रम जारी रहेगा, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
2: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
1: चलिए बनाएं एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी।

0: अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
1: चलते चलते चलते चलते
2: कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा और संगीत संजय लीला भंसाली का है। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है धनोरा बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अक्षय कुमार, दुर्गेश कुमार और वी चैतन्य कुमार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या और मंजू राजवाड़े, बुड़सरा नैला।

और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा और संगीत संजय लीला भंसाली का है। और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है धनोरा बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अक्षय कुमार, दुर्गेश कुमार और वी चैतन्य कुमार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या और मंजू राजवाड़े, बुड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बुल्ढाणा वनसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक, गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वमिका और वाणी थांडी। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, कभी कभी एक गीत वो कह देता है जो हजारों शब्द नहीं कह पाते, इसलिए शुरू के संगम से जुड़े रहिए क्योंकि अभी कई एहसास बाकी हैं। तो देर न करते हुए पढ़ते हैं आपके ईमेल्स। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म बाजी का ये गीत, उदित नारायण और साधना सरगम के युगल स्वरों में। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत अनुमली का है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और आरती सुरलकर, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती विनित नाचानी बाबू भाई और नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निरोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, साइना हसन, जैन मंदिर वाली कुरावली गली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, एटा रोड गंज डुंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, कस्बा वराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह राहुल और श्रोता क्लब फारविसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार, बिमल नवरतन, बड़ेहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी और डब्लू, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, नागपुर से प्रकाश रंभाणे, भारती रंभाणे, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहित चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, मुनाक्ष मुन्ना और हिमाक्ष, उत्तरनगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका रानी खोरवाल, भानु प्रकाश, बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल हागे और दिव्या और जय, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमान बेबी, आलिया अयान बाबू और ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, साफिया अरहान खोकर, मोहम्मद हसनैन पवार। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

इस गीत को सुनवाने के लिए हमें ईमेल किया था जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति गमरिया जमशेदपुर से, रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी नानू और रविंद्र रौनक सेन, आपने भी इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा था। धाड़ी नांडूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, काटा रोड वासे महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुलोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद पोपोरानी और रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कृति, कीर्ति, डिकेस साहू, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, यसफ अब्बासी, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब।

0: जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
0: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल की गूंज का आज का ये अंक यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सूर्यामिनी। इसमें पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन सुनिए। राग है दुर्गा।

अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग था दुर्गा। मीडियम वेव 260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब पेश है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम मनभावन में लीजिए सुनिए फिल्म जीने की राह का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनने के लिए हमें खत लिखा है जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम खंडवा, जिला खंडवा, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म जीने की राह का गीत।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम मनभावन में लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गीत, और इस गीत को सुनना चाहते हैं लेवई से गुलाबदास मानिकपुरे, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, दतरंगी से भागवत वर्मा और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश गुड़िया ठाकुर, कर्जी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, दीपक चांदनी, दीपा कृति, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निवानी, संगीता निवानी, आकाश निवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता, सागर, आयुषी, हनी और परिवार के सभी सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन में लीजिए अब सुनिए फिल्म बाजार का गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। शब्द रचना है मखदूम मोइनुद्दीन की और संगीत है खयाम का और इस गीत को सुनना चाहते हैं बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर वीरक जैतिक वीरक मीका वीरक बेमित्रा से सुरेश सारथी पूर्णिमा सारथी मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रहे महराज जहां पुणे से पंकज वाड़ूदे आर्या प्रियंका वीटी वारूदे चंद्र प्रभा वाड़ूदे और जादू का किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवान राही इमरान

रज़ा आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील रहीम, फिरोज आलम, नाज परवीन। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म बाजार का गीत

मखदूम मोहिउद्दीन का लिखा ये गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में, फिल्म का नाम था बाजार। और कार्यक्रम मन भवन में अब पेश है फिल्म दो कलियां का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत रवि ने दिया है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता साथी, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर ज़िला सूरजपुर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु यादव, टेकचंद मनोज अनुष्का यादव, ग्राम दवनसरा पोस्ट दवना सूरजपुर से कपिल राज देवांगन, दखल कल्लू भाई झांगुड़लाल और ग्राम राजापुर ज़िला सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर, रत्नेश प्रजापति, ग्राम लक्ष्मीपुर सूरजपुर से तीजन सिंह मरावी, देवालाल, सुषमा मरावी, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेय राम राजवाड़े और सारसताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, रूप साय, श्री भगत, हेमंत राजवाड़े और अंबिका राजवाड़े। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दो कलियां का ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहते थे पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका वाडोदे, जरूड वरूड से बाबा साहब वाडोदे और चंद्रप्रभा वाडोदे, चार मीनार चौक गंडई पडरिया से दरियानामा अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिलराज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश कमल, सेतपाल

भूमिका सुशीला दादी और एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना, मराठा भाऊ गणेश दादा, कार्तिक भाऊ परी, संजना मराठा, मालती स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म सहरा से। शब्द रचना है हसरत जयपुरी की और संगीत है रामलाल हीरापन्ना का। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सहरा का गीत। और सुनना चाहते हैं आप सभी साथी मायापुर अंबिकापुर से रुपेश कुमार सिन्हा, रामनंदन प्रसाद और बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, ग्राम भोरसुदा से भगवानी संतोषी, ज्योति गजेंद्र, चंद प्रकाश और सेन परिवार, चांदनी चौक गंडे पड़ैया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विकी नानू, रविंद्र और यहीं से रौनक खुशी रौनक सेन।

इसी गीत को सुनना चाहते थे फुलसर कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा से नैनदास शीला दीवान ओम प्रकाश रुकमणी जयप्रकाश प्रीति सैदान सौर्य सानवी और परिवार के सभी सदस्य पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा कुमार दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या करिश्मा कामले और सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हादिया खान असमा सालिया शोएब खान और मुस्तबा खान। और इसी के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार हम आकाश

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय

0: dates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of ntacuet.nta.nic.in. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचार बुलेटिन अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।